0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: A very warm welcome to all the listeners of Akashvani. दोस्तों मैं हूं साक्षी मांडवाल, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शबाब अहमद और हम लेकर आ गए आपके लिए सुबह 9:30 बजे ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लाइव अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज के दिन की शुरुआत भारत के लिए कैसी रही। सबसे पहले द बेस्ट न्यूज ऑफ द डे दैट केम इन अर्ली इन द मॉर्निंग वॉज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ वुशू। रोशिबेना देवी ने वुमेन 60 किलोग्राम फाइनल में भारत को और अपने लिए सिल्वर मेडल जीत लिया। जी हाँ, शी कंप्लीटेड हैट्रिक ऑफ मेडल्स इन द एशियन गेम्स। आपको याद दिला दे कि रोशिबेना देवी के नाम 2018 में भी ब्रॉन्ज मेडल रह चुका है, 2022 में वो सिल्वर पदक से भी सम्मानित करी जा चुकी हैं और उसके साथ अब 2026 में उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। शी टुक द सिल्वर मेडल इन द वुमेन सैंडा 60 किलोग्राम कैटेगरी आफ्टर अ हार्ड फॉट बैटल अगेंस्ट चाइनाज जियाओ जैंग। द बेस्ट न्यूज ऑफ द डे शबाब जी।
2: या बिल्कुल, आज का दिन ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, बल्कि ये कहा जाए कि बहुत सारे भारतीय खेल प्रेमियों के उठने से पहले, जागने से पहले एक पदक आ गया था और ये पदक दिलाया था, चूँकि ज़्यादा प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ी। दिन की बोनी कराई सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष डबल्स एकलस में कांस्य पदक के साथ ये बोनी कराई। इस वर्ग का जो स्वर्ण पदक चीन और रजत उज्बेकिस्तान के हिस्से में गया। सतनाम और सलमान 500, 1000 और 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर चल रहे थे कि इस दौरान वो चीनी जोड़ी से आधे सेकंड से मात्र पीछे रह गए। वो काफ़ी निराशाजनक रहा था वो सीन, लेकिन अंतिम चरण में आखिरकार पिछड़ गए। वो जो आधा मिनट का जो समय था वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शायद आज कुछ हो जाएगा, लेकिन अंतिम जो चरण था उसमें ये पिछड़ गए।
1: सही बोला आपने शबाब, और हम आगे बढ़ेंगे एथलेटिक्स की दुनिया से भी आपके लिए कुछ अपडेट्स लेकर आ रहे। हेप्टाथलॉन 100 मीटर हर्डल्स में अनामिका अनीश फिनिश्ड फिफ्थ इन लास्ट इन अ हीट विद द टाइम ऑफ 14.80 सेकंड्स अर्निंग 868 पॉइंट्स। जापान की यूरी तनाका टॉप्ड द हीट क्लॉकिंग 13.99 सेकंड्स टू कलेक्ट 980 पॉइंट्स। वहीं मिक्स 4x400 मीटर रिले हीट 2 में मनुटी हैज पुट इंडिया इन द थर्ड बिफोर एम आर पूवामम्मा रैन अ ब्रिलियंट सेकंड लेग टू टेक द लीड। जयकुमार मेंटेन द एडवांटेज डिस्पाइट चाइना एंड UAE क्लोजिंग इन एंड आफ्टर स्लाइटली स्लो एक्सचेंज एंकर किरण पहल हेल्ड द फ्रंट पोजिशन इन टू द फाइनल लैप। चाइना मेड अ लेट सर्च टू पिप इंडिया एट द लाइन बट द इंडियन टीम सेफली क्लिंच्ड द सेकंड प्लेस टू बुक देयर स्पॉट इन द फाइनल विद द टाइमिंग ऑफ 13:16.23 सेकेंड्स। और वुमेन्स हेप्टाथलॉन हाई जंप में भी अनामिका अनीश ने फाइनली एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी करके इन हाई जंप क्लियर्ड अ बेस्ट हाइट ऑफ 1.74 मीटर्स टू फिनिश सेकेंड इन द इवेंट एंड गैदर्ड 903 पॉइंट्स। जी हाँ, पूजा क्लियर्ड 1.71 मीटर्स टू फिनिश जॉइंट फोर्थ एडिंग 867 पॉइंट्स टू हर टैली। The performance gives both the Indian athletes a significant boost in their overall standings because अब अनामिका है 6th place पर 1,771 points के साथ और पूजा है 9th place पर 1,761 points के साथ। शबाब
2: या बिल्कुल, उधर मेघा प्रदीप की बात करें तो महिला कैनो सिंगल्स में थोड़ा सा निराशा हाथ लगी है। 200 मीटर के सेमीफाइनल में वो चौथे स्थान पर रही हैं मेघा प्रदीप। सेमीफाइनल के शीर्ष तीन खिलाड़ी ही फाइनल में पहुंचती हैं, इसलिए मेघा का फाइनल में पहुंचने का जो प्रयास था, अच्छा प्रयास उन्होंने किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया।
1: राइट, और आपको स्विमिंग की दुनिया से भी थोड़े अपडेट्स देने वाले हैं, पर वहाँ पे ज़्यादा कुछ हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए नहीं होने वाला है दोस्तों, क्योंकि स्विमिंग में हमने देखा कि मेंस 50 मीटर बटरफ्लाई हीट्स के अंदर भारत के बेनेडिक्ट बेनेस्टन फिनिश्ड फिफ्थ इन द हीट 5 ऑफ मेंस 50 मीटर बटरफ्लाई इवेंट, फेलिंग टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल बट इज स्टिल प्लेस्ड इन द रिजर्व्स। ही फिनिश्ड 12th ओवरऑल। वहीं मेंस 4x100 मीटर फ्री स्टाइल रिले हीट्स में इंडिया भारत की तरफ से बेनेडिक्ट अनीश सुनील आकाश माने और गितेश शाह वर एलिमिनेटेड इन द हीट्स आफ्टर फिनिशिंग लास्ट इन देयर 6th टीम रेस। मेंस 800 मीटर फ्रीस्टाइल में भी हमने देखा आर्यन नेहरा फिनिश थर्ड विद द टाइमिंग ऑफ 8 मिनट्स 2.52 सेकेंड्स टचिंग द वॉल 5.13 सेकेंड्स बिहाइंड वियतनाम्स गुयेन हुई हांग। और इसके साथ ही नेहरा डिड नॉट लीव दिस इवेंट विद पोडियम प्लेसमेंट ऑल्सो। निराशाजनक खबर स्विमिंग की दुनिया से शबाब।
2: हाँ, उधर अगर निशानेबाजी की बात करें तो बहुत अच्छी खबर उसमें नहीं है, क्योंकि कमलजीत ने पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल जो क्वालिफिकेशन था उसमें 580 अंक ही प्राप्त करे और उसके साथ सातवां स्थान उन्होंने हासिल किया। हालांकि उन्होंने फाइनल में इसके जगह जरूर बनाई। वहीं आकाश

0: भारद्वाज 589 अंकों के साथ 9वें स्थान पर रहे और केवल एक अंक से फाइनल में जगह बनाने से चूक गए।
1: जी अपडेट्स तो हम लगातार आपको हर घंटे लाते रहेंगे, लेकिन इससे पहले कि इस अपडेट से आपसे अभी के लिए विदा ले, आपको बता दें कि मेडल टैली में भारत की अभी स्टैंडिंग और कितने मेडल्स भारत आज अभी कमा चुका है। मेडल टैली में हम बात करेंगे तो भारत की पोजीशन है 14th, कुल मिलाकर भारत के पास इस वक्त है 14 मेडल, एक गोल्ड जो कि क्रिकेट की दुनिया से महिला क्रिकेट टीम ने हमें दिलवाया था, 6 सिल्वर आ चुके हैं जिसमें से 4 शूटिंग में आए, 1 वेटलिफ्टिंग में, 1 वुशू में, 7 ब्रॉन्ज मेडल्स आ चुके हैं जिसमें से 3 शूटिंग में है, 1 मिक्स्ड मार्शल आर्ट में, 1 सॉफ्ट टेनिस में है जो कल जय मीना लेके आए थे, विद हिस्ट्री बीइंग क्रिएटेड इन सॉफ्ट टेनिस बिकॉज ये पहला मेडल है इस तरह के स्पोर्ट के अंदर भारत का, 1 बैडमिंटन में ब्रॉन्ज आया और आज 1 रोइंग में भी ब्रॉन्ज आ गया। तो कुल मिलाकर 14 मेडल्स अभी तक, 14th पोजीशन पर है भारत। उम्मीद करते हैं कि भारत अपनी इस मेडल टेबल के अंदर पोजीशन को और ऊपर बनाएगा, यानी धीमे धीमे करके ऊपर क्लाइंब करेगा। फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ है शाबाब अहमद, हमें दीजिए इजाजत, जुड़ेंगे आपके साथ सुबह 10:30 एक बार फिर से। थैंक यू।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: नमस्कार, एशियन गेम्स की हलचल की ताजा अपडेट्स के साथ मैं हूं शबाब अनवर और मेरे साथ हैं साक्षी मांडवाल। आज सुबह बहुत अच्छी हुई थी भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए तो, जिस प्रकार से रोशबीना देवी ने वुशु में सिल्वर मेडल जिलाया और उसके बाद सतनाम और सलमान की जोड़ी ने हमें रोइंग में मेडल दिलाया, लेकिन उसके बाद जो एक घंटा गुजरा है वो सन्नाटा है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। कोई उल्लेखनीय प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों का नहीं रहा है, काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें

0: निशानेबाजी में भारत को हर इस तरह के मल्टीपल इवेंट में रहती हैं, लेकिन अभी तक कोई बहुत उल्लेखनीय प्रदर्शन नहीं है। निशानेबाजी से हम शुरुआत कर लेते हैं। अगर बात करें तो थोड़ी सी राहत इस बात की है कि अनंत जीत सिंह नारुका और पनिराज धालीवाल की भारतीय जोड़ी ने स्किट मिक्स टीम के फाइनल में जरूर जगह बनाई है। फाइनल में भारत का सामना बहुत ही मजबूत दक्षिण कोरिया, कतर और चीन से होने वाला है। भारत ने 138वें कुल में स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहा है। भारतीय जोड़ी ने तीन सीरीज में 44, 47 और 47 का स्कोर किया था। उधर भारत की पुरुष टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल के टीम इवेंट में काफी निराश किया है और ये टीम चौथे स्थान पर रही है। अगर कहा जाए तो दिलदारिंग उचुकांकर ने 568 अंक बनाए और व्यक्तिगत स्पर्धा में 35वें स्थान पर है, और वो जो उनका जो लचर प्रदर्शन था उसके कारण ही भारत जो था वो तीसरे से चौथे स्थान पर खिसक गया।
1: जी, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू गिव यू क्विक अपडेट्स ऑन टेबल टेनिस, जहां पर भारत ने ईरान को वुमेन्स डबल्स राउंड टू में हरा दिया। इंडियन टीम वॉज रिप्रेजेंटेड बाय डिया चिटले एंड यशस्वनी घोरपड़े, हु सिक्योर्ड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड 3-0 विन ओवर ईरान विद 11-2, 11-2, 11-4। एंड देन वुमेन्स डबल्स राउंड टू के अंदर भारत की एक और महिला जोड़ी उतरी, दिस टाइम फेसिंग अगेंस्ट द मंगोलियन ओपोनेंट्स, जहां पर हमने देखा कि भारत ने एक बार फिर से बड़ी आसानी से मंगोलिया को भी 3-0 से शिकस्त दे दी। श्रीजाकुला and Cinderella Das began their women's doubles campaign in style, cruising to a comfortable 11-5, 11-4, 12-10 victory over bowler Erdin Botmuk and Sanja from Mongolia. वहीं men's singles round 1 में Indian paddler Manush Shah started his men's singles campaign with a win over Malaysia's Wong Kui Shin. Manush prevailed over Wong with a clean 4-0 scoreline, which read like 11-9, 14-12, 11-7, 11-4. So early start right now for table tennis, but definitely small little smiles, क्योंकि यहाँ पर भारत को at least शुरुआती जीत मिलनी शुरू हो गई है। शबाब
0: जी, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और जैसे जैसे ये क्रम आगे बढ़ेगा हम इसकी जानकारी देते रहेंगे। बहुत सारे खेल आज नए स्पर्धाएं भी शुरू हुई हैं, उसमें एक फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी भी है, और उसमें महिला वर्ग में कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अच्छी शुरुआत हुई है, क्योंकि तलवारबाजी स्पर्धा में भारत की भवानी देवी पूल 4 में चौथे और श्रेया गुप्ता पूल 2 में दूसरे स्थान पर रही हैं। ग्रुप स्टेज के बाद दोनों ने राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली है, आगे बढ़ने की थोड़ी गुंजाइश इस मुकाबले में है।
1: जी, और स्क्वाश से भी आपको दे देते हैं अपडेट, जहां ऑल इंडिया क्लैश इन द मिक्स डबल्स राउंड ऑफ 16 हुआ था, जिसमें जोशना चिनप्पा एंड विल्वन सेंथिल कुमार सिक्योर्ड हार्ड फॉट 2-0 विक्ट्री ओवर फेलो इंडियंस सूरज चंद एंड शमीना रियाज टू एडवांस टू द मिक्स quarterfinals. The second game proved to be a thriller with Suraj and Shamina fighting back from 7-9 down to level it at 9-9 and earn a game point. However, Joshana Chinnappa's experience held firm during the pressure points, allowing her and Senthil Kumar to close out the match in their favor.
0: थोड़ा क्रिकेट की बात फिर से शुरू हो गई है एशियन गेम्स में। आपको बताइए कि महिला वर्ग का खिताब भारत ने जीता, अपने स्वर्ण पदक की रक्षा की। मेंस वर्ग का मुकाबला भी आज से शुरू हो गया है, और पहला मुकाबला था जापान यानी जो मेजबान टीम है और अफगानिस्तान ने, तो वहां से ये खबर ये आ रही है कि इस मुकाबले में अफगानिस्तान ने मेजबान जापान को 48 रनों से हरा दिया है। और आपको तो याद होगा कि भारत को क्वार्टर फाइनल में बाई मिला है मेंस टीम में। 28 सितंबर का इंतजार कीजिए, एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। फिलहाल क्रिकेट की शुरुआत पुरुष वर्ग में भी हो गई है।
1: जी, और कबड्डी ने भी आज के दिन की शुरुआत कर ली है, जिसमें इंडिया इज अप अगेंस्ट चाइनीज तिपा इन द मेंस ग्रुप ए मैच, और फर्स्ट हाफ भारत के नाम रहा बहुत ही कन्विंसिंगली और कमांडिंग तरीके से, जहां भारत ने 23-11 से फर्स्ट हाफ को अपने नाम किया, और दूसरा हाफ दोस्तों अभी जारी है, बरकरार है। भारत इस वक्त उसमें भी लीड में है 5 अंकों से, यानी भारत के पास अभी हुए हैं 12 अंक और चाइनीज ने पाए अपने उसमें सिर्फ 7 अंक ही डाल पाए हैं इन द सेकेंड हाफ। द मैच इज स्टिल ऑन गोइंग, इंडिया स्टैंड्स एट अ टोटल ऑफ 35 पॉइंट्स, व्हाइल चाइनीज ने पाए स्टैंड्स एट अ टोटल ऑफ 18 पॉइंट्स सो फार। सो ही इज होपिंग दैट इंडिया शुड बी एबल टू ऑल्सो क्रूज ईजी इन दिस गेम। और आपको ये भी बता दें कि शूटिंग की दुनिया में एक निराशाजनक खबर आपको ये दे सकते हैं कि बोथ द इंडियन मेन्स एंड वुमेन्स पिस्टल शूटर्स रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड from the Asian Games with no medal in either individual or team events so far, जैसे आपको शबाब बता भी रहे थे, लेकिन एक overall अगर आपको picture दें तो pistol ने अभी तक 7 medals produce किए in the last 2 Asias, 3 gold, 2 silver, 2 bronze, और आज के लिए या फिर आगे भी मैं कहूंगी दोस्तों, अभी mixed doubles की

0: जैसे बॉब से पहले की बात करें तो, लेकिन उधर हमें अगर कबड्डी की बात करें तो यहाँ जलवा भारत का बरकरार है। लगातार चौथी जीत दर्ज की है भारत ने, चीनी ताइपे को 37-21 से हराया है। और जैसा कि हमने बताया कि लगातार चौथी जीत के साथ लगभग सभी ग्रुप मैच जीत कर भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है पुरुष कबड्डी में।
1: Right, and the other big news that we'll now bring to you, or rather should we move on towards, is from the world of squash, जहाँ पर हमने देखा कि अनहत सिंह won and wrapped up a contest with an 11-7 victory in the third game, and thereby in the women's singles round of 16 clash was able to defeat her opponent 3-0 to qualify for the quarterfinals. It was a clean victory that came her way, 11-4, 11-5, 11-7. Good news from the world of squash. और उससे पहले भी अगर हम squash के कुछ और events के ऊपर आज एक नजर डालें तो All Indian clash in the mixed doubles round of 16 भी हमने आज देखा, जिसमें जोशना चिनप्पा एंड विलवन सेंथिल कुमार सिक्योर्ड अ हार्ड फॉट 2-0 विक्ट्री ओवर फेलो इंडियंस सूरज चंद एंड शमीना रियाज टू एडवांस टू द मिक्स्ड डबल्स क्वार्टर फाइनल्स। एंड मेंस सिंगल्स राउंड वन में भी मनुष शाह एंजॉयड अ कंफर्टेबल स्टार्ट टू हिज मेंस सिंगल्स कैंपेन विद अ विन ओवर मलेशियाज वोंग क्वी शेन ऑफ मलेशिया 11-9, 14-12, 11-7, 11-4. सो कन्विंसिंग कंफर्टेबल कमांडिंग विक्ट्रीज कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्क्वॉश स्पेशली फॉर द इंडियंस। और आज इसी इवेंट के अंदर और भी आप बहुत सारी इवेंट्स देखने वाले, यानी स्क्वाश के अंदर जहां पर आप देखेंगे, अभी हमने देखा अनहत सिंह की वुमेन सिंगल्स राउंड ऑफ 16 का क्लैश, उसके बाद अभय सिंह, वीर चौटरानी, तन्वी खन्ना विल आल्सो बी हैविंग देयर इवेंट्स टुडे।
0: होगा तलवारबाजी की बात करें तो सुबह 10:30 बजे हमने एक अच्छी खबर सुनाई थी, लेकिन अभी जो खबर है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि भवानी देवी, जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी राउंड ऑफ 16 में, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। हम श्रोता को बता दें कि भारत के सीए भवानी देवी महिला साबरे के राउंड ऑफ 16 में हार कर बाहर हो गई हैं। उन्हें 2026 के वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट चीन के राव शुंगई ने 15-5 से पराजित कर दिया है।
1: Right, and the big news that came in today early in the morning was from the world of wushu, जहां रोशी बिना देवी ने women 60 किलोग्राम फाइनल के अंदर सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया और भारत का नाम एक बार फिर से रोशन कर दिया। हैट्रिक ऑफ मेडल्स फॉर हर इन द एशियन गेम्स, बिकॉज 2018 के एशियन गेम्स में उनको ब्रॉन्ज से नवाजा गया था, 2022 के एशियन गेम्स में उनको सिल्वर से नवाजा गया था, और एक बार फिर से 2026 में उन्होंने सिल्वर पदक अपने नाम कर लिया। गोज टू शो हर कंप्लीट डोमिनेंस इन वुशु इन द 60 किलोग्राम कैटेगरी, विच शी obviously earned after a hard-fought battle against China's Zhao Zhang. And Shabab, हमें पता है, it's never going to be easy to defeat a Chinese opponent in any sport, but we have Roshibina Devi somehow breaking those barriers and every time proving every person wrong that we can go ahead and defeat China or Japan also.
0: देखिए individual round में अगर देखा जाए तो अब तक जितने भी athlete ने जो कारनामा देखा है उनमें वो सबसे आगे हैं, जिस तरह का उनका सफर रहा है और जिन परिस्थितियों में उन्होंने कई खेल छोड़े और सेल्फ डिफेंस के लिए जो उन्होंने जो अपनाया एक घटना घटने के बाद उनके बाद उसमें लेकर के जो आगे बढ़ी वो काबिल तारीफ है।
1: राइट, एंड नाउ अ क्विक अपडेट ऑल्सो कमिंग इन फ्रॉम शूटिंग, जहाँ आपको बता दें कि एक अच्छी खबर या खुशखबरी की हम उम्मीद कर सकते हैं शूटिंग में, वो है मिक्स टीम स्केट के फाइनल्स के थ्रू, बिकॉज इसके अंदर आपको बता दें द इंडियन शूटिंग पेयर ऑफ अनंतजीत सिंह नरुका और परनास धलेवाल हैव मेड इट टू द फाइनल्स ऑफ द मिक्स स्केट शूटिंग कॉम्पिटिशन, एंड दे हैड फिनिश्ड फोर्थ इन द क्वालिफिकेशन राउंड गेटिंग 138 आउट ऑफ 150 पॉइंट्स एज पर द ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स। ऑल्सो कतर, साउथ कोरिया और चाइना उनके ऊपर हैं ये तीनों देश, चौथे पर उन्होंने फिनिश किया था, तो दे आर गोइंग टू नाउ बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द मिक्स्ड स्कीट टीम फाइनल्स। ये इवेंट 11:15 बजे सुबह शुरू हो चुका है, इसके बारे में आपको अपडेट लेके आएंगे अगले एक घंटे के बाद, यानी दोपहर 12:30 बजे आपको इसमें बताएंगे क्या हुआ। फिलहाल के लिए शबाब और मुझे यानी साक्षी को दीजिए इजाजत, वी विल कैच यू बैक अगेन विद ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स इन द 12:30 अपडेट। थैंक यू सो मच, गुड बाय।
2: एशियन गेम्स 2026।
3: நேயர்களே, இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்த தற்போதைய நிலவரம் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள்.

0: நேர்களே, ஜப்பானில் நடைபெறும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் தற்போதைய நிலவரம் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: It's time for the Asian Games 2026 update.
2: Asian Games 2026 Aichi Nagoya.
3: Hello and a very warm welcome to all the listeners of Akashvani. मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त दोस्तों यहाँ पर मौजूद हैं शाबाब अनवर और हम लेकर आ गए आपके लिए एशियन गेम्स 2026 की लेटेस्ट अपडेट्स दोपहर 12:30 बजे. इंतज़ार का सफ़र थोड़ा लंबा रहा आज के इस इवेंट के अंदर, लेकिन फाइनली वो सफ़र आकर समाप्त हुआ. मैं बात कर रही हूँ शूटिंग में. भारत की मिक्स टीम्स की फाइनल्स में हमारे भारतीय शूटर्स अनंतजीत सिंह नरूका और परिनाज धालीवाल ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलवा दिया. जी हाँ, अ कमेंडेबल परफॉर्मेंस पुट अप बाय द टू इंडियन शूटर्स इन द मिक्स्ड टीम्स की फाइनल्स, अनंतजीत सिंह नरूका एंड परिनाज धालीवाल, एंड दे हैड ऑल द रीजंस टू स्टैंड टॉल एंड प्राउड फॉर देयर एफर्ट्स, बिकॉज डिस्पाइट टाइंग विद कोरिया एट 44 पॉइंट्स फॉर द नंबर टू स्पॉट, यानी दूसरे स्थान के लिए, दे हैड टू सेटल इन विद द ब्रॉन्ज आफ्टर द एंड ऑफ द सिक्स सीरीज सिक्स ओइंग टू अ लोअर स्कोर इन क्वालिफाइंग राउंड. जी हाँ, बिकॉज द स्कोर्स ऑफ द इंडियन शूटर्स वर लो इन द क्वालिफाइंग round. Hence, they couldn't stand to be in competition for the second spot finish. But nonetheless, the effort of Anantjeet Singh Naruka and Parinaz Dhalawal in itself is huge, commendable and appreciable. So, here's to the Indian shooters and to the Indian mixed teams keep final events, which concluded with the bronze medal for India.
4: Yeah, और कुल पदकों की संख्या 7-15 भी हो गई है. उधर स्क्वाश से भी अच्छी खबर आ रही है. तन्वी खन्ना क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं, हम आपको बता दें, और अभय भी राउंड 16 में पहुंचे हैं. तन्वी खन्ना ने स्क्वाश के विमेंस सिंगल्स इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई. उन्होंने सिंगापुर की केई गहन को 3-1 से पराजित किया. मेन सिंगल्स इवेंट में अभय सिंह श्रीलंका के रविंदु लक्षिरी को 2-0 से हरा के प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जगह बना ली. वीर चित्रानी ने मलेशिया के संजय जीवा के खिलाफ पहला गेम 11-19 जीता था, 11-9 से माफ कीजिएगा जीता था, जिस समय हम आए थे स्टूडियो. और उधर इससे पहले भी हमने आपको खबर दी थी कि 18 साल की अनाहत सिंह ने स्क्वैश के महिला सिंगल्स

0: ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। उन्होंने सिंगापुर की ओ यू योंग वाई यन को 3-0 से हराया। तीसरी वरीयता प्राप्त अनाहत ने मुकाबला 11-4, 11-15, 11-7 से जीता और इस जीत के साथ ही अनाहत क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। तो स्क्वैश में आज सुबह से ही अच्छी खबरें आ रही हैं
1: जी, और क्योंकि हम यहां पर अच्छी खबरों की बात कर रहे हैं और ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है तो इसको मैं बरकरार रखती हूँ। कबड्डी की दुनिया से भी अपने श्रोताओं का हमें लेटेस्ट अपडेट दे देते हैं कि एज वॉज एक्सपेक्टेड द चाइनीज ताइपे टीम वॉज नो मैच फॉर इंडिया इन द फाइनल ग्रुप ए गेम। इंडिया सिक्योर 37-21 विक्ट्री टू क्वालिफाई फॉर द सेमी फाइनल्स एज द टॉप रैंक्ड टीम। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि भारत को कबड्डी की दुनिया से अब एक मेडल तो डेफिनेटली तय हो ही गया है। अब वो कौन से रंग का होगा शबाब, थोड़े दिनों में या कह सकते हैं कि थोड़े ही पलों में पता चल जाएगा, कुछ घंटों बाद कल तक, लेकिन फिलहाल द गुड न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ कबड्डी इज दैट
0: इंडिया रंग तो वही स्वर्णिम होगा, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तलवारबाजी में भी काफी उम्मीद थी भारत को, लेकिन खास करके भवानी देवी महिला वर्ग में, लेकिन उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा। राउंड ऑफ 16 में वो हारी हैं और ये जो साबरे में राउंड 15 का ये मुकाबला था, राउंड ऑफ 16 का कह दें हम, उससे वो बाहर हो गई। जो 2026 वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट चीन की रॉय शियोपी ने 15-5 से उन्हें पराजित किया।
1: राइट, और आपको बता दें आज दिन की शुरुआत हुई थी रोइंग की दुनिया से, जहां पर हमें सबसे पहले मेडल्स की अनाउंसमेंट्स आज भारत के एंगल से मिले थे। मेंस डबल्स कल्स फाइनल्स में हमें ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ था, जहां पर हमारे रोअर्स सतनाम सिंह और सलमान खान ने फिनिश किया था थर्ड स्पॉट पर इन द मेंस डबल्स कल बाय ऑब्वियसली टाइमिंग अ स्कोर ऑफ 6:13.25 टू सिक्योर द ब्रॉन्ज मेडल, फिनिशिंग जस्ट 3.48 बिहाइंड द गोल्ड मेडलिस्ट वी जूदी एंड नियर येद ऑफ चाइना। यानी बहुत ही छोटे मार्जिन से हम सिल्वर या स्वर्ण तक नहीं पहुंच पाए शबाब, लेकिन वी स्टिल मैनेज टू गेट अ ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया एट द स्टार्ट ऑफ द डे टूडे। सो हियर्स टू आर टू रोअर्स सतनाम सिंह एंड सलमान खान फॉर ब्रिंगिंग द इंडियन रोअर्स एंड मेकिंग देम फील प्राउड।
0: बहुत सवेरे उन्होंने खुशखबरी सुना दी थी हम लोग को। उधर क्रिकेट प्रेमियों को भी इंतजार था कि मेन्स क्रिकेट शुरू एशियन गेम्स से हो रहा है, तो जी हाँ उसकी शुरुआत हो गई, उसका पहला मुकाबला भी हो गया और पहला मुकाबला अफगानिस्तान ने जीता। मेजबान जापान को 48 रनों से उन्होंने पराजित किया। ग्रुप ए के इस मुकाबले में अफगानी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 129 रन बनाए थे, जवाब में जापान 81 रन ही बना सका
1: जी। और हॉकी में आपको बता दें कि मेंस हॉकी पूल ए एनकाउंटर इस समय शुरू हो चुका है, भारत इज अप अगेंस्ट साउथ कोरिया एंड अच्छी खबर यह है कि यहां पर भी भारत का कंप्लीट डोमिनेशन दिख रहा है उनकी ओपोनेंट साउथ कोरिया के ऊपर, बिकॉज थर्ड क्वार्टर की शुरुआत हो चुकी है और भारत बहुत स्ट्रॉन्ग लीड बना लिए 6-0 से। इस समय भारत आगे है, साउथ कोरिया हैज एन अपहिल टास्क टू मेक अ कमबैक इनटू दिस गेम। भारत की तरफ से शीलानंद लाकरा, सुखजीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, अभिषेक दिलप्रीत सिंह और इन चारों कहना चाहिए हॉकी प्लेयर्स ने भारत के लिए गोल दागे हैं, जिसमें से एक तो पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन था जो हरमनप्रीत सिंह ने करा। सो ऑल इन ऑल अ वेरी कमांडिंग एंड अ वेरी डोमिनेटिंग स्टार्ट बाय द इंडियन हॉकी प्लेयर्स अर्ली ऑन अगेंस्ट रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ही इज होपिंग कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा हम खुशखबरियों का सिलसिला जारी रखेंगे आप सबके साथ। फिलहाल के लिए शबाब और मुझे साक्षी को दीजिए इजाजत। वी विल ज्वाइन बैक वंस अगेन एट 1:30 PM विद ऑल द लाइव अपडेट्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एशियन गेम्स 2026। Thank you.
2: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.
3: நேர்களே, ஜப்பானில் நடைபெறும் 20th ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் தற்போதைய நிலவரம் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள். பன்னெண்டு மணி 36 ஆயிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த தருணத்தில் நாம் ஹாய் ஸ்நேகிதிய நிகழ்ச்சியோடு தான் நடந்துருக்கிறோம். இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் என்ன தலைப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீடுகளில் நம்ம உடன்பிறந்த உடன்பிறப்புகளோடு போட்ட ஒரு சில செல்ல சண்டைகள், அந்த செல்ல சண்டைகள் நம்மளை ஏதோ ஒரு நினைவுகளை நாம் நோக்கி பயணிக்கும் பொழுது அந்த ஞாபகங்களெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு பசுமையாக ஏற்படக்கூடிய ஒரு ஞாபகமாக மாறி போகும். அதை நினச்சி இன்றைக்கி நமக்குள்ளார ஒரு ஆனந்தமான ஒரு சிரிப்பு, புன் சிரிப்பு உள்ளுக்குள்ளார இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். சே, இப்படியெல்லாம் இருந்திருக்கிறோமே நம்ம கூட பிறந்த தம்பியோட, நம்ம அண்ணனோட எவ்வளோ தெல்ல சண்டைகளெல்லாம் போட்டிருக்கோம். இன்றைக்கி வேறு ஒரு தளத்தில், வேறு ஒரு நிலையில் அதை நாம் நோக்கி போயிட்டுருப்போம். நம்ம பிள்ளைகள் அவங்க போடக்கூடிய சண்டைகளை நினச்சிக்கிட்டு அதை பார்க்கும்பொழுது நமக்கு நம்ம சின்ன வயசில் ஏற்பட்ட அந்த நினைவுகளெல்லாம் நமக்கு ரொம்பவே பசுமையாக ஞாபகத்துக்கு வரும். அப்படிப்பட்ட நினைவுகளை தான் பகிர்ந்து சொல்லியிருந்தேங்க. அந்த வகையில் நீங்கள் உங்களோட

0: நேயர்களே, ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்த தற்போதைய நிலவரம் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாக கேட்கலாம்.
1: ஏஷியன் கேம்ஸ் 2026 ஐச்சி நகோயா.
2: Hello and a very warm welcome to all the listeners of Akashvani. मैं हूँ साक्षी मांडवाल. मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर जुड़ रहे शबाब अनवर. घड़ी में हो गया है इस समय 1:30 और हम लेकर आ गए दोस्तों आपके लिए एवरी आवर अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026. और क्योंकि दोपहर के 1:30 बज रहे, आज के दोपहर की शुरुआत अपडेट्स की हम करते हैं खुशखबरी के साथ. क्यों शबाब?
3: यहाँ बिल्कुल खुशखबरी ये है कि भारत ने मेन्स हॉकी में मजबूत टीम मानी जाने वाली इस ग्रुप की साउथ कोरिया को बड़े आराम से 8-2 से पराजित कर दिया है. और इस टूर्नामेंट में पूरे अगर कहा जाए एशियन गेम्स के इतिहास में ये अब तक साउथ कोरिया पर भारत की सबसे बड़ी जीत है. एशियन गेम्स में इससे बड़ी जीत भारत ने अब तक हासिल नहीं की थी. और जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले जो मुकाबले हुए थे अपेक्षाकृत आसान टीमों के विरुद्ध भारत बहुत बड़े अंतर से जीता था. तब ऐसा कहा जा रहा था कि असल परीक्षा तो कोरिया के साथ होगी, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने यह साबित कर दिया कि कितनी तैयारी के साथ आए हैं अपने खिताब की रक्षा करने के लिए. कुल मिलाकर यह कहा जाए कि टीम इंडिया ने पूल ए में यह लगातार 3री जीत हासिल की और जाहिर सी बात है अपने ग्रुप में वो चोटी पर है.
2: जी, और थोड़ी सी आपको खबर एक और देते हैं बॉक्सिंग की दुनिया से, जहां मेरे पास ज़्यादा खुशखबरी वाली न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन वेल इट्स एन अपडेट दैट वी हैव टू गिव यू कि बॉक्सिंग में सुमित किंदु का जो मुकाबला था 70 किलोग्राम के राउंड ऑफ 32 में, वेर ही वॉज अप अगेंस्ट अली कासिम, वो फिलहाल उनसे फॉरफीट कर लिया गया. क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज सुमित की जब शुरुआत हुई थी उस मुकाबले में, ही लैंडेड बिग पंचेस अर्ली इन द बाउट एंड मेंटेन्ड अ क्लियर डोमिनेंस ओवर द इराकी प्यूजलिस्ट. द इंडियन बॉक्सर टुक द फर्स्ट राउंड 5-0 एंड उसके बाद सेकेंड राउंड भी स्प्लिट डिसीजन से भारतीय बॉक्सर सुमित कुंदू के ही फेवर में गया था विद द डिसीजन ऑफ 3-2. बट डिजास्टर स्ट्रक जस्ट सेकेंड्स इनटू द थर्ड राउंड एज सुमित सफर्ड अ सीवियर नी इंजरी, स्लिपिंग एंड हॉबलिंग बिफोर द मेडिकल ऑफिसर स्टेप्ड इन टू स्टॉप द बाउट. वेल, द ऑफिशियल सस्पेक्टेड एन ACL इंजरी, ब्रिंगिंग अ हार्ट ब्रेकिंगली अब्रप्ट एंड टू हिज कैंपेन. एंड एज अ रिजल्ट इट कुडंट हैव बीन मच मोर वर्स फॉर द इंडियन बॉक्सर सुमित कुंदू, बिकॉज इराक्स अली अल सरे एडवांस टू द क्वार्टर फाइनल्स ऑटोमेटिकली.
3: यह साक्षी, एक रोइंग से खबर आ रही है, बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन अपने श्रोताओं को अपडेट देना बहुत ज़रूरी है. भारत के कुलविंदर सिंह, नवदीप सिंह, जकार खान और बलराज पवार की टीम पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स के जो फाइनल मुकाबले थे उसमें 5वें स्थान पर रही. हालांकि प्रयास बहुत अच्छा किया था उन्होंने, लेकिन सफलता ज़्यादा मिली नहीं. चीन ने इस मुकाबले का गोल्ड मेडल जीता, इंडोनेशिया दूसरे, उज्बेकिस्तान तीसरे और जापान चौथे स्थान पर आए.
2: जी, और स्विमिंग में भी नॉट अ लॉट ऑफ गुड न्यूज़ टू गिव एट दिस आवर, बिकॉज एट द स्टार्ट ऑफ द डे वी विटनेस्ड एक्शन इन मेंस 50 मीटर बटरफ्लाई हीट्स, मेंस 4x200 फ्री स्टाइल रिले हीट्स एंड मेंस 800 मीटर फ्री स्टाइल. इन तीनों इवेंट्स में एक एक करके आपको बताते हैं. मेंस 50 मीटर बटरफ्लाई हीट्स में भारत के

0: Saturday. Benedictine Beniston finished fifth in the heat 5 of men's 50-meter butterfly event, failing to qualify for the final directly but is still placed in the reserves. He finished 12th overall. Men's 4 into 100-meter 100 freestyle relay heats ke andar, Benedictine Beniston, Anish Sunil, Akash Mane or Gitesh Shah were eliminated in the heats after finishing last in their six-team race event. Men's 800-meter freestyle mein bhi, humne dekha Aryan Nehra finished third with a timing of 8 minute 2.52 seconds, touching the wall 5.13 seconds behind Vietnam's Nguyen Hoi Hoang. As a result, Aryan Nehra did not leave this event with a podium placement also.
1: Yeah, बिल्कुल। और स्क्वैश में भी आज का दिन अच्छा रहा है। आज इस मुकाबले भी शुरू हुए। तन्वी खन्ना ने स्क्वैश के विमेन्स सिंगल्स इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। उन्होंने सिंगापुर की वेई रहन को 3-1 से हराया। और मेन सिंगल्स में अभय सिंह श्रीलंका के रविंदु लक्षिरी को 2-0 से हरा कर प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जगह बनाई। और चोत्रानी ने अगर देखा जाए तो मलेशिया के संजय जीवा को 2-1 से हराया। उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले हमने देखा था कि किस प्रकार से 18 साल की अनाहत सिंह ने स्क्वैश के महिला सिंगल्स में जीत के साथ अपना अभियान शुरू किया था और उन्होंने सिंगापुर की ओ यी योंग वाई इयान को 3-0 से हराया था। तीसरी वरीयता प्राप्त अनाहत ने मुकाबला 11-4, 11-5, 11-7 से जीता था। तो आज जो कुछ अच्छे मुकाबले भारत के लिए हुए हैं उसमें स्क्वैश भी शामिल है।
0: ऑफ कोर्स, इनफैक्ट शायद इकलौता ऐसा कह सकते हैं लेटर पार्ट ऑफ द डे में स्क्वैश हमें गुड न्यूज लेके आया है, बिकॉज वुशु से भी हमें गुड न्यूज मिली ही मिली है। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट रोशिबिना देवी गॉट अस द कोवेटेड सिल्वर इन द 60 किलोग्राम कैटेगरी इन वुशु एंड थेरबाय शी वॉज एबल टू स्कोर अ हैट्रिक ऑफ मेडल्स इन 3 एशियन गेम्स 2018, 2022 और 2026। तीनों बार उन्होंने मेडल्स अपने नाम किए। अ हैट्रिक ऑफ मेडल्स कमिंग फॉर रोशिबिना देवी। एंड आई थिंक शबाब, वी आल्सो हैव सम न्यूज़ टू शेयर फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ फेंसिंग फॉर आवर लिसनर्स टुडे।
1: या बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर थोड़ी सी परेशानी हुई। भवानी देवी ने थोड़ा सा निराश किया। राउंड ऑफ 16 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और बहुत ही अफसोसनाक ये खबर रही है, क्योंकि उन्होंने 2026 वर्ल्ड चैम्पियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट को उन्होंने हराया था और उसके बाद से मुकाबले से बाहर होना थोड़ा चिंता की बात है।
0: राइट, विल कैरी ऑन विद दीज अपडेट्स ऑफ कोर्स। लेकिन उसके साथ आपको ये भी बता दें कि आज दिन की शुरुआत भी मेडल्स के साथ ही हमारे लिए हुई थी, बट विल बी कमिंग विद दैट, जिसकी वजह से भारत की पोजीशन अगर मेडल टेबल पर देखिए तो 14th पोजीशन पर अब बन गई है। 15 मेडल्स कुल मिला के भारत को मिले, जिसमें से एक है गोल्ड क्रिकेट की दुनिया से, महिला क्रिकेट ने दिलवाया। 6 सिल्वर है, जिसमें 4 शूटिंग, 8 वेट लिफ्टिंग और 1 वुशु से आया है। और 8 ब्रॉन्ज मेडल्स, 4 शूटिंग से, 1 मिक्स मार्शल आर्ट से, 1 सॉफ्ट टेनिस से, 1 बैडमिंटन और 1 रोइंग, मेकिंग इट अ टोटल of 15 medals. Hope still resting a lot on the Indian athletes. और इसी उम्मीद के साथ कि भारतीय एथलीट्स और प्लेयर्स भारत का नाम और रोशन करवाए और मेडल टेबल में धीमे धीमे करके भारत और ऊपर आए। On that note, right now it's Shabab and me, Sakshi, saying goodbye to our listeners. We'll join back at 3:30 PM with all the live updates of the ongoing Asian Games 2026. Asian
2: நேர்களே, இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20th ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்த தற்போதைய நிலவரத்தை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் பெற கேட்டீர்கள். வணக்கம். ஸ்டூடியோ கிளாக்ல நேரம் சரியாக 1:37 ஆயிட்டிருக்கு. கேட்டுருக்கீங்க ஆகாஷ்வாணி ரெயின்போ எஃப்எம் 101.4, எல்லாமே எப்பவுமே சமதூர். S101.4 திரைக்கணம் தான் கேட்டுருக்கீங்க. திரைக்கணத்தில் உங்களுக்காக அடுத்ததாக வரவிருக்கக்கூடிய பாடல் வாலியுடைய வரிகளில் கே வி மகாதேவனுடைய இசையில் எல்லாரும் ஈஸ்வரியுடைய குரலில் ஒரு அழகான பாடல் செல்வம் திரைப்படத்துலேருந்து உங்களுக்காக வந்துட்டே இருக்கு. கேட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸ்டேட் யூன் வித் ரெயின்போ எஃப்எம் 101.4, இங்கே எல்லாமே எப்பவுமே சமதூல்.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं आपकी मित्र विमलेश उमंग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं।
3: और मैं आपका मित्र अजीत, आप सबों को उमंग कार्यक्रम की ओर से जोहार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। विचार शिक्षा के बारे में है, लिखते हैं,
2: शिक्षा ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास कर सकती है।
3: जी, इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से, प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
2: राजानगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद।
3: तो श्रोताओ, हम कहना चाहते हैं कि आपके संदेश हमारे लिए हमेशा प्रोत्साहन का कारण होते हैं। पुनः धन्यवाद। निवेदन है कि इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: जी,
3: आइए अब चलते हैं आविष्कार की एक और बेहद रोचक और मजेदार कहानी में।
2: श्रोताओ, अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारी जिंदगी में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम ये सोचते भी नहीं है कि कभी उनका भी आविष्कार हुआ होगा। नजर दौड़ाइए ना अपने चारों ओर, आप पाएंगे कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो चलिए अब बढ़ाते हैं चर्चा को आगे।
3: तो आज हम बात करेंगे बॉल पेन के बारे में।
2: जी,
3: वही बॉल पेन जो अक्सर हमारे हाथों में मिलता है। आप सोच रहे होंगे भला बॉल पेन में ऐसी क्या कहानी हो सकती है, छोटी सी कलम ही तो है बस।
2: लेकिन श्रोताओ, कई बार हम महसूस ही नहीं कर पाते कि जिस चीज को हम मामूली समझते हैं उसके पीछे कभी कभी पूरी दुनिया की मेहनत छिपी होती है। जरा सोचिए, अगर आज हमारी जेब में बॉल पेन न हो तो कितनी मुश्किल हो जाए।
3: आपको याद होगा कि पहले लिखने के लिए फाउंटेन पेन हुआ करते थे, जिन्हें हम कलम भी कहते थे। उन दिनों समस्या ये थी कि पुराने समय की कलमें अक्सर आसानी से नहीं चलती थी। फाउंटेन पेन में स्याही भरनी पड़ती थी, स्याही फैल सकती थी, वो रिस भी सकती थी, कपड़ों में भी लग सकती थी। एक बड़ी समस्या ये भी थी कि फाउंटेन पेन की लिखाई जल्दी सूखती भी नहीं थी। लिखते समय निब को भी संभालना पड़ता था। और तो और, गिर जाने पर निब के टूट जाने का भी डर लगा रहता था। यानी समस्या पर समस्या।
2: तो श्रोताओ, वैज्ञानिकों और आविष्कारों के मन में सवाल था, क्या ऐसी कलम बनाई जा सकती है जिसमें स्याही अपने आप नीचे आए लेकिन रिसे नहीं, साथ ही साथ निब भी न टूटे। और यहीं से शुरू होती है हमारे बॉल पेन के आविष्कार की रोचक यात्रा।
3: तो श्रोताओ, हुआ ये कि 20वीं सदी के आरंभ में कई लोगों ने ऐसी कलम बनाने के प्रयोग किए।
2: जी,
3: लेकिन सफलता आसान नहीं थी। यहीं से इस कहानी में प्रवेश होता है हंगरी के पत्रकार और आविष्कारक लाज़लो बायरो का। उन्होंने ध्यान दिया कि अखबार छापने वाली मशीन की स्याही जल्दी सूख जाती है। एक विचार उनके मन में कौंधा, अगर यही जल्दी सूखने वाली स्याही कलम में इस्तेमाल की जाए तो। विचार तो अच्छा था, लेकिन
2: एक नई समस्या सामने आई। वो ये थी कि स्याही फाउंटेन पेन की पतली निब से आसानी से नहीं निकलती थी। फिर लाज़लो बायरो ने सोचा, स्याही को निब से निकालने के बजाय क्यों न एक छोटी सी गेंद के सहारे कागज पर पहुंचाएं और

0: उन्होंने एक बहुत ही छोटी गेंद बनाई।
1: जी कल्पना कीजिए श्रोताओ, जब गेंद कागज पर घूमती तो वह स्याही को अपने साथ लेकर आती और कागज पर छोड़ देती।
0: जी
1: यानी गेंद घूमती जाती और उसके आगे आगे शब्द बनते जाते।
0: जी
1: यही तो है नवाचार।
0: कलम की अगली नोक या पॉइंट पर एक बेहद छोटी गेंद। इस छोटी गेंद यानी बॉल के कारण नाम पड़ा बॉल पॉइंट पेन। बायरो और उनके भाई जॉर्ज बायरो ने सन 1938 में अपने बॉल पॉइंट पेन का पेटेंट कराया।
1: और श्रोता मित्रों, उसके बाद जो हुआ ना वो इतिहास है। स्कूल के बच्चों से लेकर बड़े अधिकारी तक सबके हाथ में अब बॉल पेन दिखने लगी।
0: जी
1: इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान था। ढक्कन खोलिए, कागज पर रखिए और लिखना शुरू कर दीजिए।
0: बिल्कुल,
1: न स्याही की दवा चाहिए और न निब को बार बार स्याही में डुबोने की झंझट।
0: जी आज बॉल पेन के अंदर एक पतली सी स्याही की एक ट्यूब होती है और सबसे आगे एक बहुत छोटी गेंद। जब हम लिखते हैं तो नन्ही गेंद घूमती है और स्याही को नियंत्रित मात्रा में कागज पर पहुंचा देती है। वाह, एक नन्ही सी गेंद ने लिखने की दुनिया ही बदल दी।
1: जी, एक नन्ही सी गेंद ने लिखने की दुनिया ही बदल दी। तो साथियों याद रखिएगा, आज जब हम परीक्षा देते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, नोट्स लिखते हैं और फॉर्म भरते हैं, उस समय हमारी उंगलियों के बीच चुपचाप चलती है वही तकनीक जिसे बायरो ने लगभग एक सदी पहले विकसित किया था।
0: तो ये थी हमारी आज की जानकारी, आशा है आपको अच्छी लगी होगी। प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा प्रश्न है कि बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था और वे किस देश के थे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था और वो किस देश के थे। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है समझदारी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि समझदारी इसी में है कि यदि हम एक दूसरे के साथ सहयोग और भाईचारे की भावना से रहें तो इसी में सबकी भलाई है।
1: समझदारी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: 50 रुपयों में से 35

0: रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
1: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
2: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
1: मश्क।
3: होशियार,
1: समझदार।
3: पेंसिल तराश,
1: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
3: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
1: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
3: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी।
0: आओ खेलें झटपट झटपट कुछ अनूठे खेल, सब मिलकर बनाएं हम अक्षर।

0: और अब आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम। शीर्षक है, असफलताएं भी शिक्षक होती हैं।
1: प्रेरक प्रसंग श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में बताया गया है, किस प्रकार उन्होंने बिजली के बल्ब के आविष्कार के क्रम में कई बार असफलताओं का सामना किया और उनसे हतोत्साहित नहीं हुए, लेकिन उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार किया।
2: नमस्कार साथियों,
3: प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक प्रसंग।
2: तो आइए सबसे पहले पूछते हैं एक पहेली, जरा बताइए तो वो कौन है?
3: उन्हें दुनिया में सबसे अधिक आविष्कार करने और उनका पेटेंट लेने का श्रेय प्राप्त है।
2: उन्होंने लगभग 1300 आविष्कार किए, जरा सोचिए, सोचिए।
3: साथियों, यदि आपके मन में थॉमस एडिसन का नाम आ रहा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है।
2: जी हाँ, वो महान आविष्कारक और वैज्ञानिक हैं, थॉमस एल्वा एडिसन। उन्हें मुख्य रूप से बिजली के बल्ब, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर और चलचित्र के आविष्कार के लिए जाना जाता है।
3: महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलान नगर में 11 फरवरी 1847 को हुआ था। वे अपनी माता नैन्सी एलियट और पिता सैमुअल एडिसन की 7वीं संतान थे।
2: बचपन से ही वो बहुत ही जिज्ञासु थे। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वो शिक्षकों से अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिया करते थे जिनका जवाब देना कठिन होता था। शिक्षक और सहपाठी उन्हें शरारती और मूर्ख समझते थे।
3: एक दिन की बात है, शिक्षक ने बालक एडिसन को बुलाया और उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा कर कहा,
4: अपनी माँ को ये चिट्ठी दे देना,

0: भोले भाले बच्चे ने वो चिट्ठी ली और घर पहुंचकर अपनी माँ को दे दी।
1: माँ ये चिट्ठी।
0: माँ ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वो चिट्ठी अलमारी में रख दी।
2: दूसरे दिन से एडिसन फिर कभी स्कूल नहीं गए। वो घर पर ही पढ़ाई करने लगे। एक बार उन्होंने अपनी माँ से पूछा,
1: माँ आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? क्या अध्यापक ने चिट्ठी में कुछ लिखा है?
2: बेटा एडिसन, उन्होंने ये कहा कि आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है।
1: अच्छा,
2: इसलिए वो हमारे विद्यालय के लायक नहीं है। क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो ना।
1: अच्छा,
2: उनको लगता है कि उनके विद्यालय में तुम्हारी प्रतिभा वैसी नहीं निखर पाएगी जैसी कि आशा की जाती है।
1: हाँ
2: ठीक है, बहुत अच्छे। साथियों, उनकी माँ स्वयं एक शिक्षिका थी और वो जानती थी कि ये बच्चा मानसिक रूप से कमजोर नहीं है। उन्होंने एडिसन को घर पर ही पढ़ाया। वो एडिसन के सभी प्रश्नों का उत्तर यथासंभव देने की कोशिश करती और प्रारंभ में उन्हें बुनियादी साक्षरता के साथ साथ अंकगणित पढ़ाया। उन्हें विशेषकर विज्ञान में बहुत रुचि थी।
0: उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़े होने पर काम करना शुरू किया और परिवार की सहायता भी करने लगे। अमेरिका के डेट्रॉइट शहर के रेलवे स्टेशन पर उन्होंने अखबार और चॉकलेट बेचने का काम किया।
2: रेल के डिब्बे में ही उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली थी। एक बार की बात है, वो रेल के डिब्बे में ही कुछ रासायनिक प्रयोग कर रहे थे कि फास्फोरस के गिर जाने के कारण वहां आग लग गई, भगदड़ मच गई।
0: इतने में रेल अधीक्षक वहां भागा भागा आया और जब उसने सारा माजरा देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने एडिसन को एक जोरदार थप्पड़ मारा जिसके कारण वे हमेशा के लिए आंशिक रूप से बहरे हो गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ना व प्रयोग करना जारी रखा। उनकी माँ उन्हें पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें दे दी और प्रोत्साहित कर दी कि वे जितना अधिक हो सकता है अवश्य पढ़ें। थॉमस एडिसन के मन में पढ़ने की अदम्य इच्छा उनकी माँ के कारण ही उत्पन्न हुई।
2: एक बार उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था,
0: ओह, मैंने यथासंभव लगभग सब कुछ पढ़ा है जो कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। मुझे पुस्तकों से अगाध प्रेम है।
2: साथियों, उनकी स्मृति में थॉमस एडिसन नेशनल हिस्टोरिकल म्यूजियम बनाया गया है। इस विशाल म्यूजियम की तीसरी मंजिल में उन किताबों का विशाल संग्रह है जो किताबें थॉमस एडिसन ने अपने जीवन काल में पढ़ी थी। थॉमस एडिसन ने एक बार अपनी माँ के बारे में कहा था,
0: मेरी माँ ने ही मेरा निर्माण किया। वे बहुत सच्ची थी और मुझ पर विश्वास करती थी।
2: थॉमस एडिसन ने अपनी पहली प्रयोगशाला अपने घर पर ही उस समय बनाई थी जब वो मात्र 10 वर्ष के थे। कहते हैं कि वो बेहद परिश्रमी थे और अक्सर अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करते करते वो लेबोरेटरी की कुर्सी या टेबल पर ही सो जाया करते थे। समय बीता, इस बीच उनकी माँ का देहांत हो गया था। बहुत वर्ष बीते और एडिसन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सफलता की बुलंदियों को लांघते हुए विश्व प्रसिद्ध आविष्कारक बन चुके थे।
0: उनके द्वारा किए गए आविष्कारों में मुख्य रूप से कार्बन माइक्रोफोन, फोनोग्राफ, चलचित्र, ड्रामो

0: फोन, विद्युत वोट रिकॉर्डर, विद्युत वितरण प्रणाली और बिजली का बल्ब है। बिजली के बल्ब के आविष्कार की कहानी अत्यंत रोचक है।
1: इसका आविष्कार करने के लिए थॉमस एडिसन को सैकड़ों बार असफलता का सामना करना पड़ा। शुरू में कई बल्ब चले, लेकिन कुछ ही सेकंड या मिनट में टूट गए। लेकिन एडिसन ने जैसे हार मानना सीखा ही नहीं था।
0: अथक परिश्रम और सतत प्रयोगों के बाद अंत में 1889 में उन्हें बिजली का बल्ब बनाने में सफलता हाथ लगी। पहला बिजली का सफल बल्ब लगभग 40 घंटों तक जला। 1880 में उन्होंने इसमें और अधिक सुधार किया और अब ये महीनों तक लगातार जल सकता था।
1: जब बिजली के बल्ब का आविष्कार हुआ तो सारे अमेरिका में तहलका मच गया।

0: और अधिक सुधार किया और अब ये महीनों तक लगातार जल सकता था।
1: जब बिजली के बल्ब का आविष्कार हुआ तो सारे अमेरिका में तहलका मच गया। लोगों के लिए ये किसी अजूबे से कम नहीं था। दूर दूर से लोग इस बल्ब को देखने के लिए आते थे। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बेंजामिन हैरिसन ने इस महान आविष्कार के लिए उनका विशेष रूप से अभिनंदन किया और उनसे निवेदन किया कि वो अमरीकी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस को बिजली के बल्बों से जगमगा दे।
0: एक बार की बात है, उनके सम्मान में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बहुत से पत्रकार जमा थे। एक पत्रकार ने पूछा,
1: मिस्टर एडिसन, बिजली के बल्ब के आविष्कार की प्रक्रिया में आप कितनी बार असफल हुए?
0: लगभग 10,000 बार।
1: 10,000 बार?
0: लेकिन मैं उन्हें असफलता नहीं कहूंगा।
1: अच्छा?
0: मैं कहूंगा कि मैंने 10,000 उन तरीकों को खोजने में सफलता पाई जिनसे बिजली का बल्ब बनाया नहीं जा सकता था।
1: अरे वाह।
0: वे दरअसल 10,000 स्टेप्स थे जिन्हें तय करके मैं सफलता तक पहुंचा।
1: क्या बात है। तो साथियों, ये था असफलताओं के प्रति थॉमस एडिसन का दृष्टिकोण। उन्होंने अपनी असफलताओं को भी बहुत सकारात्मक ढंग से देखा। अपने बहरेपन के बारे में एक बार उन्होंने विनोदपूर्ण ढंग से कहा था,
0: मैं ठीक से सुन नहीं पाता हूँ, इसके मुझे 2 लाभ मिलते हैं। पहली बात, लोग मेरे पास आकर व्यर्थ की बात नहीं करते, और दूसरी बात, इसके कारण मैं पुस्तकों और वैज्ञानिक सोच को अधिक समय दे पाता हूँ।
1: एक दिन एडिसन ने पुरानी अलमारी को खोला और यूं ही कुछ देखने लगे कि तभी एक लिफाफा नीचे गिरा। एडिसन ने उसे उठाया। अरे, ये तो वही पत्र था जो उनके स्कूल के अध्यापक ने भेजा था। उन्होंने उसे पढ़ा। लिखा था,
0: डियर मिसेस एडिसन, आपका बच्चा बेहद मंद बुद्धि का है और वो कुछ सीख नहीं सकता। उसके स्कूल में होने से दूसरे बच्चों पर भी फर्क पड़ता है, इसलिए अच्छा होगा उसके लिए कोई दूसरा स्कूल देख ले या उसे स्वयं ही पढ़ा ले।
1: थॉमस एडिसन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये है किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास में एक माता की सकारात्मक भूमिका। उन्होंने हमेशा ये बोल बोल कर कि तुम जीनियस हो, अपने बेटे का मनोबल बढ़ाया और यहां तक बढ़ाया कि थॉमस एडिसन इतिहास का स्वर्णिम हस्ताक्षर बन गए। जीवन के संघर्षों के प्रति उनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध है,
0: हम तब नहीं हारते जब हम गिर जाते या हार जाते हैं। दरअसल हम तब हारते हैं जब हम गिरकर उठने से इनकार कर देते हैं। 18 अक्टूबर 1931 को वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में 84 वर्ष की आयु में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। विश्व उनके अमूल्य योगदान को सर्वदा याद रखेगा।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम असफलताएं भी शिक्षक होती हैं।

0: और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ मुझे यानी अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: தவிர்த்துடுங்க. முதல் நாள் ஜுரம் ஓகே, நீங்கள் ஒரு பேரசிட்டமால் வாங்கி போடலாம். ரெண்டாம் நாள் ஜுரம் வருது அல்லது அதீதமான ஜுரம் இருக்குது, வேறு சிம்டம்ஸ் நான் சொன்னாலே இந்த வார்னிங் சைன்ஸ் அப்படின்ட்டு இந்த வாந்தி வயிற்றுவலி அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று தோணுதுன்னா, நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க மருத்துவரையோ.
1: ஏஷியன் கேம்ஸ் 2026 ஐசி நகோயா.
2: Hello and a very warm welcome to all the listeners of Akashvani. Main hu dosto Sakshi Mandwal aur is waqt mere sath yahan studio mein maujood hai Shabab Anwar aur hum lekar aa gaye aapke liye ongoing Asian Games 2026 ke live updates. Ghadi mein baj rahe is waqt dopahar ke 3:30 baje aur is update ki shuruaat main ek nirashajanak khabar ke sath karne wali hu dosto, kyunki women's world final ke andar Bharat ki lone representation jo ki thi Praneeti Nayak, उनसे हमारी सारी उम्मीदें अब समाप्त हो चुकी हैं. जी हाँ, Praneeti Nayak's medals hope in the women's vault final are over. India's lone gymnast scored 13.100 after her two attempts, but stronger performances from Yu Seo Jong, Eun Chung Ok and Du Seo pushed her down the standings to the sixth position. Uzbekistan's 51-year-old legend Oksana Chusovitina then scored 13.199 to move ahead of Praneeti as well. तो इस खबर के साथ मैं यहां से अब अगली अपडेट की ओर इशारा कर रुख करूंगी और उसके पास हम चलेंगे शबाब के पास.
3: जी, आज बॉक्सिंग की मुक्केबाजी का जो मुकाबला है जिसमें भारत की भागीदारी थी वो समाप्त हो चुका है आज के दिन. और कुल कहा जाए कि आज का दिन जो भारतीय मुक्केबाजी में दिल तोड़ने वाला रहा है एक तरह से कहा जाए तो. सुमित, जैसा कि हम आपको अपडेट दे चुके हैं पहले, एक ऐसे समय पर घायल होकर बाहर हो गए जब वो जीत के करीब आते हुए नज़र आ रहे थे. उसके बाद महिला वर्ग में अगर देखा जाए तो भारत की साक्षी चौधरी से काफ़ी उम्मीदें थीं क्योंकि उन्होंने शुरुआती राउंड में ओलंपिक पदक विजेता को हराया था, कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक विजेता है, काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, अच्छी शुरुआत भी उन्होंने की थी, लेकिन वो अपने मुकाबले को बचा नहीं पाई और 2-3 से मुकाबला हार गईं. और जाते जाते एक थोड़ी सी उम्मीद और आशा ज़रूर दे गई हैं, वो अपने खेल से नहीं बल्कि किस्मत से. परवीन हुडा को वाकओवर मिल गया था चूँकि राउंड शुरू होने से पहले ही. अगर देखा जाए तो तजाकिस्तान की मलिका नोजिशोवा को थोड़ी सी परेशानी हो गई थी जिसके कारण उन्होंने वाकओवर दे दिया, जिसके कारण वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई. तो एक उम्मीद बनी है कि क्वार्टर फाइनल में अब उन्हें हम खेलते हुए यानी कि परवीन हुडा को देख सकते हैं. तो साक्षी चौधरी की बात अगर की जाए तो मुक्केबाजी के महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में राउंड ऑफ 16 में हार कर बाहर हो गई. उन्हें कजाकिस्तान के मुक्केबाज आलुआ बालिकम बोवा ने 3-2 से पराजित किया. तो ये मुक्केबाजी में आज तक का सफर था भारत का.
2: जी, और बॉक्सिंग के अंदर एक स्लाइट करेक्शन करके आपके पास वापस आती हूँ कि वेमेन 65 kg प्रिलिमरी राउंड ऑफ 16 में भारत की परवीन को वॉकओवर जरूर मिला, लेकिन वो तजाकिस्तान की मलिका नोजीमोवा थी जिसकी वजह से हमारी भारत की बॉक्सर परवीन ने अपनी एंट्री अब क्वार्टर फाइनल्स के अंदर सिक्योर कर ली है. गुड न्यूज कमिंग ओवर देयर थैंकफुली इन सम फॉर्म फॉर द इंडियंस. लेकिन हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे. अगली खबर में आपके लिए दोस्तों लेके आ रही हूँ स्क्वाश की दुनिया में, जहाँ जोशना चिनप्पा एंड वी संतिल कुमार सिक्योर हार्ट 2-0 victory over their own fellow Indian Suraj Chand and Shamina Riaz to advance to the mixed doubles quarterfinals. Dusri taraf agar baat kare to Anahat Singh also won her women's singles round of 16 3-0 to qualify for the quarterfinals, defeating her opponent 11-4, 11-5, 11-7. India also made a bright start in squash in men's singles round of 16 with Abhay Singh defeating Sri Lanka's Ravindu Laksari to seal the match 3-0 in his favor. On the adjacent court, we also saw Veer Chotrani facing a tougher battle against Malaysia's Sanjay Jiva. The final score of the match was 3-2 in favor of India's Veer Chotrani, the score line being 11-9, 8-11, 11-6, 15-11, 11-6. And finally, Tanvi Khanna pulled off a comeback win over Singapore's Oh Yong Wai Yan in the women's singles round of 16. After dropping the opening game 5-11, Tanvi responded by winning the next three 11-4, 11-5 and 13-11 to seal a 3-1 victory. So happy days, smiling days for now for the Indians in the world of squash, Shabab.
3: जी बिल्कुल। और लेकिन सब अभी तक आज का जो सबसे ज़्यादा जो खुशखबरी दी है वो निश्चित रूप से हम फिर दोहराना चाहेंगे, जो हर अपडेट में हम उनका नाम ले रहे हैं, और वो हैं रोशबीना देवी। यानी वुशु में आज का दिन बहुत अच्छा रहा भारत के लिए। उम्मीद तो हालांकि गोल्ड मेडल की जा रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया महिलाओं के 60 किलोग्राम जो सांडा इवेंट होता है उसके फाइनल।

0: நேர்களே, தொடர்வது சந்தேஷ் டு சோல்ஜர்.
1: शाम के चार बज गए हैं और पेश हैं एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की।

0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि भारत में मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% विनिर्माण होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स्ड निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीत लिया है। वहीं पुरुष कबड्डी टीम आखिरी ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस घंटे के एफएम रेन में मुख्य समाचार, आगे है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के खास एपिसोड में आपका सभी का स्वागत है. आप सुन रहे हैं 102.6 देश का नंबर वन रेडियो आकाशवाणी रेनबो. कारगिल की बुलंदियों पर लिखी गई थी एक ऐसी कहानी जिसे दुनिया आज भी भारत की विजयी शौर्य गाथा के रूप में याद करती है. हमारे वीर जवानों के अदम्य साहस, वीरता, कर्तव्य, निष्ठा और उनके अमूल्य बलिदान की कहानी. संदेश टू सोल्जर्स के आज के हमारे खास मेहमान कारगिल युद्ध के एक ऐसे योद्धा, एक डैरिंग सोल्जर हैं जिन्होंने 25 साल तक इंडियन आर्मी आर्टिलरी में अपनी सेवाएं दी. वो हेलीकॉप्टर पायलट रहे और अनगिनत मिशंस के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशंस किए, देश और साथी जवानों की सुरक्षा में जान की बाजी लगा दी. उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डिप्यूटी प्लानिंग ऑफिसर के रूप में इंटरनेशनल कोऑपरेशन संभाला. ऑफसेट पॉलिसी 2006 के रचनाकार रहे. उन्होंने नेक्स्टर फ्रांस और राइन मेटल जर्मनी के हेड के रूप में भारत को रिप्रेजेंट किया और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. आज के हमारे खास मेहमान हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी. सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के शो संदेश टू सोल्जर्स में.
1: जय हिंद. थैंक यू ऑल द लिसनर्स. थैंक यू शाहिद फॉर हैविंग मी ओवर फॉर दिस ब्यूटिफुल शो टुडे.
0: थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय निकाला और आप हमारे साथ आए. बहुत बहुत धन्यवाद.
1: थैंक यू.
0: तो सर, हम आज का शो शुरू करेंगे आपके साथ. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूंगा. इतनी सारी आपकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं, अचीवमेंट्स हैं, जो आपके जो ऑनर्स हैं उनको मैं जब पढ़ रहा था. तो आपकी शुरुआत ही, आप बचपन से बहुत डिसिप्लिन थे, बहुत ही हम्बल और बहुत ही ऑनेस्ट चाइल्डहुड आपका रहा. आपके पिता एक डॉक्टर और आपकी बहन जो है नेशनल एथलीट, और आपके भाई भी जो है स्पोर्ट्स और स्टडीज में एक्सेल कर चुके हैं. तो किस तरीके का बचपन था, कैसी हुई शुरुआत, फिर आगे बढ़ेंगे हम.
1: मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे माँ बाप ने हमको बहुत मेहनत की, हम बच्चों के ऊपर बिल्कुल ऑनर्स शुरू से सिखाया है कि आप सिंसियर रहो लाइफ के अंदर, ऑनर्स रहिए और बिल्कुल बिल्कुल हर चीज सीधी लाइन में चलना हमारे माँ बाप ने सिखाया था. तो हमारी बहनों के ऊपर बहुत मेहनत की स्पोर्ट्स के ऊपर. हम भाइयों को उन्होंने बोला, उस टाइम स्पोर्ट्स में ज्यादा वो नहीं था चांसेस, तो उन्होंने बोला आप पढ़ाई पे ध्यान दो. फिर हम दोनों भाइयों ने पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया. तो हम चारों बहन भाई ने अपने अपने फील्ड में जहां भी काम किया काफी एक्सेल किया लाइफ के अंदर, जो हम कर सकते थे. माँ बाप का बहुत बड़ा सहयोग था उसमें.
0: जी,

0: सर, अब हम बात करें कि जैसे आपकी शुरुआत हुई, तो क्या पहले से ही कुछ प्लान था बचपन में, लड़कपन में कुछ जोश, कोई जज्बा था कि इंडियन आर्मी मुझे ज्वाइन करनी है? और क्या ये कुछ खास एक जज्बा आपके दिल में था कि हेलीकॉप्टर पायलट ही बनना है? कैसे हुई शुरुआत, आपने आई में ज्वाइन किया?
1: ऐसा था, मैंने ना बीकॉम किया था, मैंने ग्रेजुएशन किया था। मेरे ब्रदर इन लॉ आर्मी में थे, मेरे अंकल, हमारे और रिलेटिव बहुत आर्मी में थे, और जब भी मैं उनके यहाँ जाता था तो मुझे
0: जी
1: बहुत बहुत अच्छा लगता था। डिसिप्लिन एनवायरनमेंट वहाँ का, और यूनिफॉर्म्स में देखना सोल्जर्स ने आना, जैसे सोल्जर्स ने आके सल्यूट करना,
0: जी
1: कंडक्ट सोल्जर्स का, ऑफिसर्स का लेडीज की तरफ, या जैसे बहुत बहुत ही जैसे होना चाहिए कि बिल्कुल परफेक्ट होता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था ये एनवायरनमेंट विजावी आउटसाइड जो मैं देखता था। जैसे जो मुझे किसी, तभी तो कॉलेज में था तो थोड़ा थोड़ी समझ कम थी,
0: जी
1: पर फिर मैंने सोचा मुझे आर्मी ही ज्वाइन कर ली है। फिर
0: जी
1: मैंने आर्मी के दौरान, हमारे इंडियन मिलिट्री एकेडमी जब हम ज्वाइन करते हैं, मैंने कॉलेज के बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन किया, तो वहां पर हमसे
0: ओके
1: चॉइस ऑफ आर्म पूछा जाता है, तो मैंने आर्टिलरी इसलिए चुना कि मैं चाहता था कि आगे जाके मैं फ्लाइंग कर सकूं। फ्लाइंग मेरा संभव पैशन था
0: पैशन
1: और
0: जी
1: सिर्फ आर्टिलरी की वजह से ही मैं फ्लाइंग कर सकता था, इसलिए मैंने आर्टिलरी चुना।
0: राइट सर, तो ये बड़ा जोशीला ये जज्बा था, और मतलब हमें अभी भी सुनकर के लगता है कि कितना ही एक्साइटिंग सा ये रहा होगा और रहता है। तो क्या ये उतना ही एक्साइटिंग होता है या बहुत ही खतरनाक भी होता है, और जिस तरीके के जब हमें मिशंस करने पड़ते हैं?
1: फ्लाइंग पे आने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा। फ्लाइंग से
0: जी
1: आने से पहले मैं और दो यूनिट्स में मैंने काम किया,
0: जी
1: 92
0: जी
1: मीडियम रेजिमेंट में, 217 मीडियम रेजिमेंट में।
0: जी
1: उसमें मुझे मौका मिला काफी इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज करने में, चाहे वह पंजाब प्रॉब्लम समझ लीजिए, जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम समझ लीजिए।
0: जी
1: तो हमने ग्राउंड वर्क पे बहुत ज्यादा, मतलब जो मिलिटेंसी के साथ बहुत इन यूनिट्स ने काम किया, तो हम वेरी प्राउड कि मैं ऐसी यूनिट्स के साथ एसोसिएटेड था।
0: जी
1: फिर उसके बाद फिर मैं जब फ्लाइंग कैरियर में आया, मैं पायलट बना, मुझे विंग्स मिले फ्लाइंग में। फिर हमने 9 साल फ्लाइंग किया, तो उस 9 साल के अंदर हम अलग अलग स्टेशन पे, आगरा, नासिक, कई जगह पे फ्लाइंग करता रहा मैं। बाद में मेरे को 2 साल मौका मिला सियाचिन ग्लेशियर में फ्लाइंग करने का।
0: जी
1: सियाचिन ग्लेशियर का फ्लाइंग का मतलब है ये मोस्ट हॉस्पिटेबल टेरेन इन द वर्ल्ड, सियाचिन ग्लेशियर,
0: एग्जैक्टली
1: जहां टेम्परेचर होता है -50 से -60, एक्सट्रीम टेम्परेचर की बात करो तो। वहां की फ्लाइंग, मतलब हमारे हेलीकॉप्टर भी जो थे वो चीता हेलीकॉप्टर थे,
0: जी
1: जो हमारे कुछ शुरू शुरू में एक्सीडेंट भी थे, हमारे से पहले एक्सीडेंट्स भी होते थे, तो फ्रेंच वालों को बुलाया गया था कि यहाँ पर आपके एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं।
0: जी
1: कहते हैं ये जो आप हेलीकॉप्टर यहाँ उड़ा रहे हो, इस जगह के लिए नहीं बना है ये। पर हमारी आर्मी में इतना जोश था, इतना जज्बा था कि चीता हेलीकॉप्टर्स हमारे आर्मी के भी और एयरफोर्स के दोनों उड़ा रहे थे। और सुबह से लेकर शाम तक जो हमने काम किया 2 साल, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी सेटिस्फाइंग कैरियर नहीं महसूस किया टिल आई केम टू द कारगिल वॉर।
0: जी
1: कारगिल वॉर मेरा दूसरा एक्सपीरियंस था, बट जो मेरी फ्लाइंग सियाचिन ग्लेशियर में थी, मेरे को लगता था मैंने जिंदगी में कोई बहुत अच्छा काम किया है।
0: जी सर, हम आगे बढ़ते रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे, लेकिन हम इन चीजों पर और ज्यादा आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ा ही एक्साइटिंग था ये आपका जो फ्लाइंग करियर था, और जो हेलीकॉप्टर उड़ाना, और जिस तरीके के जो खतरनाक एरियाज में, और इतने कम टेम्परेचर, इतनी ऊंची पहाड़ियों पर, तो वो सब चीजें, और जो करियर आपका शुरू हुआ बड़ा ही जोश और जज्बे के साथ शुरू हुआ था। तो जैसा कि आपने बताया कि वो बचपन में जब आप देखते थे, तो वही चीज मोटिवेटिंग बनी, या और भी कोई चीज थी जो आप, जैसे हम मूवीज में देखते हैं, अपने आर्मी ऑफिसर्स को देखते हैं, बैटल्स देखते हैं, तो वो जोश, वो जज्बा, वो हम उस पर आएंगे, आपसे बात करेंगे। तो पहले हम बता दें अपने लिसनर्स को कि आप भी आज के संदेश टू सोल्जर्स के हमारे मेहमान लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी से सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपना मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं हमें, नंबर है 9868107070, और आप हमें सुन रहे हैं 102.6 देश नंबर वन रेडियो आकाशवाणी रेनबो पर, दिल्ली एनसीआर में, और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर अलग अलग हिस्सों में देश के। और साथ ही हमारी मोबाइल ऐप है न्यूज ऑन AIR, जिस पर आप हमें सुन सकते हैं अपनी मोबाइल ऐप पर।

0: 102.6 एशिया नंबर वन रेडियो, आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स, और आज के संदेश टू सोल्जर्स के हमारे खास मेहमान हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी। बचपन से ही शौक रहा अनिल नंदा जी को कि वो हेलीकॉप्टर पायलट बने, और जिस तरह के टेरेन में इनको मौका मिला काम करने का वो अपने आप में अद्भुत है, अनबिलीवेबल है। सर, एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका हमारे इस शो में।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: सर, हम बात करना चाहते हैं कि ये जो आपने चूज किया, ये जोश और जज्बे से भरा एक करियर था, हेलीकॉप्टर पायलट जब आप बने और आपने सियाचिन ग्लेशियर जैसी एक मतलब बहुत टफ कहा जाए टेरेन होती है, कैसे रहा? मतलब शुरुआत तो जाहिर है जब आप शुरू कर रहे थे तो डर भी लगा या सब जोश था सब कुछ?
1: ऐसा है, जब हम लोगों ने फ्लाइंग कैरियर शुरू किया था तो हम लोग थोड़ा टफ कंपटीशन से हम लोग को सिलेक्ट होते थे हमारे आर्टिलरी में, तो पायलट करीब होते थे, तो जो भी हम फ्लाइंग के लिए जाते थे पहले 6 महीने हम लोग फिक्स विंग फ्लाइंग करते हैं। वो ऐसा टाइम होता है जिसमें आदमी को फ्लाइंग से अगर डर लगता है तो वो ग्राउंड हो जाता है, उसको वापस भेज देते हैं। तो फाइनली हम लोग 28 में से 18 लोग बच गए थे जो हेलीकॉप्टर फाइनली हमने कोर्स पूरा किया था। तो जिन जिन के दिमाग में वो डर था वो पीछे मतलब उनको उन्होंने वापस यूनिट पे भेज दिया था।
0: सर, तो ऐसा ये क्राइटेरिया होता है कि मतलब ट्रेनिंग के बाद भी ये मौका दिया जाता है कि जो फ्लाइंग कर रहे हैं एक्चुअल फ्लाइंग, उसके बाद भी उनको वापस बुलाया जा सकता है?
1: नहीं, जो एक बार ग्राउंडेड हो गया वो कभी दोबारा फ्लाइंग में नहीं आ सकता।
0: अच्छा,
1: एक बार ग्राउंड हो गया, जैसे मैंने बताया 28 में से हम लोग फाइनली 18 जो ऑफिसर्स थे जो फाइनली जिनको विंग्स मिला था जो पायलट बने थे, तो 18 बाकी 10 को वापस यूनिट आर्मी में बाकी काम के लिए भेज दिया गया।
0: तो
1: पायलट बन गए तो उसके बाद वो लोग वापस नहीं आ सकते।
0: सर, आपने जैसे बताया कि सियाचिन में जो टेम्परेचर होता है वो -50 to 60 डिग्री सेल्सियस, सर वो अनबिलीवेबल लगता है हमें सुनकर के, आपको कैसा लगता था?

0: ऐसा है, ये टेम्परेचर -50 to -60 वाली इसलिए बोला, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर जो -50 से -60 पे जाता है, -10 भी हो सकता है, -15 भी हो सकता है, -20 भी हो सकता है, ये टेम्परेचर ऐसा होता है जब विंटर्स होती है वहां पर, तो हमको सुबह सुबह उठ के फ्लाइंग करनी होती है, तो आपने ग्लव्स पहने होते हैं। अगर उस टेम्परेचर पे अगर आपने हेलीकॉप्टर के किसी पार्ट को हाथ लगा दिया, नंगे हाथ लगा दिए, तो आपको वही फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है।
1: तो सर उसको क्या समझे हम आम भाषा में?
0: फ्रॉस्ट बाइट मतलब जैसे बर्फ को अगर आप किसी अगर उस जगह पे करें तो आपका खून जम जाएगा वहां पर, वो खून आपको उंगली ही कटवानी पड़ेगी, आप वो उंगली ठीक नहीं हो सकती है, फ्रॉस्ट बाइट उसी को कहते हैं। तो अगर आपने सुबह सुबह ऐसा होता है कि जब हम हिल्स में, सियाचिन ग्लेशियर हिल्स है बेसिकली, हिल्स में 11-12 बजे के बाद वेदर पैकअप हो जाता है।
1: अच्छा,
0: तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं, और क्योंकि ऊपर लोग लोग बैठे हैं, जो जवान लोग ऊपर चोटियों पे बैठे हैं, उनको खाना पहुंचाना, उनको उनको राशन पहुंचाना, उनको ऑयल पहुंचाना, उनको दवाइयां पहुंचाना, उनको जो कैजुअल्टी ऊपर बैठी है उसको नीचे लेके आना, लोगों के घर से जो चिट्ठियां आती है या उनकी चिट्ठियां जवानों की नीचे लेके आनी। मोबाइल वगैरह का टाइम तो हमारे टाइम पे नहीं था, जब मैं अपने टाइम, आज का क्या है मुझे नहीं मालूम, तो इन सबको करते करते हमारे को हम 2 घंटे फ्लाइंग करके फिर पेट्रोल खत्म हो जाता था, वापस आके फिर पेट्रोल भर के फिर दोबारा, तो 5:30 बजे हमारी फ्लाइंग शुरू हो जाती थी, 11-12 बजे के बाद हर रोज और तकरीबन वहां वेदर पैकअप हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है जितने भी ऊपर जो बीमार वगैरह है उनको जल्दी नीचे लाया जाए। हर पोस्ट के ऊपर एक डॉक्टर होता है, वो कहता है कि ये P1 कैजुअल्टी है, P2 P3, अगर P1 कैजुअल्टी है इसका मतलब अगर आदमी को नहीं निकाला आपने तो ये कल तक नहीं बचेगा। तो हेलीकॉप्टर पायलट का ये मिशन रहता है कि जल्दी से जल्दी को लाया जाए, और वेदर खराब मिला तो बहुत मुश्किल।
1: तो इसका मतलब सर हर रोज हर एक मिशन एक नया चैलेंज होता है आपके।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो सर वो इस कदर टफ सिचुएशंस में आपको अपनी भी सेफ्टी तो रखनी होती होगी ना, तो वो कैसे फिर आप पॉसिबल कर पाते हैं?
0: तो बी ऑनेस्ट विद यू, हर फौजी जब उसी अपने मिशन पे काम कर रहा होता है ना, अपना तो नहीं सोचता है, वो सोचता कि मुझे हेलीकॉप्टर फ्लाइंग मिली है, मेरे को फ्लाइंग करना है सियाचिन में। अगर वो डरेगा तो फिर आपको मैं एक तरीका बता दूं, जैसे आप अभी सुना होगा कभी कोई हेलीकॉप्टर का कभी भगवान ना करे एक्सीडेंट होगा ना, तो ऑर्डर ये होते हैं कि सारे के सारे हेलीकॉप्टर थोड़ी देर के बाद सब फ्लाई करनी शुरू कर देंगे, किस ताकि जो पायलट ग्राउंड में बैठे हैं उनके दिल में डर ना बैठ जाए। ये डर दूर करने के लिए हमेशा ऐसे होता है, जैसे मिक्स अगर मिक्स स्क्वाड्रन में कहीं कोई वो होता है, क्रैश होता है, तो बाकी थोड़े मिक्स सब के सब फ्लाई करना शुरू कर देंगे, बिकॉज ये डर निकालने के लिए।
1: क्या बात है सर,
0: ये ट्रेनिंग का तरीका है। तो हम लोग अपना तो उस टाइम कहां सोचते थे, मतलब ऊपर जो जवान बैठा है उसको नीचे कैसे लाना है, जो बीमार है उसके उसको राशन कैसे पहुंचाना है, तो बहुत मतलब बहुत सोल्जर्स का बहुत जरूरी जज्बा होता है।
1: बिल्कुल सर, और वो जज्बा जो एक सोल्जर का होता है वो शायद हम महसूस भी नहीं कर सकते, जो एक सोल्जर का जज्बा, जैसे आपने कहा कि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर।
0: एब्सोल्युटली
1: जी। तो सर ये जो चैलेंजेस आपके रहे इस तरीके से आपने जो मिशंस किए, तो उन मिशंस के दौरान कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको आज भी डराता हो, याद आता हो?
0: ऐसा है, जब हम लैंड करने जाते थे तो जो जो 17,000 फीट 18,000 फीट पे जहां हेलीकॉप्टर आपका उड़ना ही नहीं चाहता, पावर आपकी बिल्कुल खत्म हो जाती है।
1: जी जी, आपने बताया इस बारे में कि हेलीकॉप्टर इनकार कर देता है
0: फ्लाइट की, बिकॉज पावर पूरी खत्म हो जाती है। जब आप लैंड करने जाते हो तो ऐसी जगह है, छोटा सा हेलीपैड होता है, वहां पर जो पोस्ट होती है वो लोग इग्लू के अंदर होते हैं, इग्लू के अंदर।
1: अच्छा,
0: ओके। बाहर सारी बर्फ इतनी पड़ रही होती है रात को, तो एच कैसे बार्क करे हेलीकॉप्टर हमको भी बताना है, क्योंकि हर जगह व्हाइट व्हाइट व्हाइट, तो एच क्या करते हैं बाहर निकल के, एच का पेट तो है नहीं, कभी बॉर्नविटा से एच बना रहे हैं, कभी चॉकलेट पाउडर से एच बना रहे हैं, ताकि हेलीकॉप्टर आ सके। हेलीकॉप्टर उनके लिए जान होती थी, तो वहां पर उससे पहले क्रिवास 100 फीट 200 फीट 500 फीट की क्रिवास होती है। तो एक बार आप लैंड करने जा रहे हो, उधर से पाकिस्तान को जब पता चलता था ये हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, तो एयर बर्स्ट एम्यूनिशन फायर करने शुरू कर देता,
1: यानी कि आपको चारों तरफ से वो खतरा
0: एब्सोल्युटली
1: उसका सामना भी करना है और मिशन भी पूरा करना है, और आपको लैंड करने के लिए जगह भी नहीं है।
0: कुछ सेकंड मिलते थे, हेलीकॉप्टर के ब्लेड आप रोक नहीं सकते।
1: अच्छा,
0: आप वहां पर रुकते हैं कुछ सेकंड के लिए, पीछे लोग आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, पूरा सामान निकालते थे, अपनी खाली टिन अंदर डालते थे, किसी कैजुअल्टी को नीचे आना एकदम जंप करता था हेलीकॉप्टर में, कुछ सेकंड भी हमको हेलीकॉप्टर हटा के वापस लाना होता था। तो मतलब कुछ सेकंड मिलते थे, कुछ आई विल नॉट से सेकंड, मे बी अप टू अ मिनट और टू, तो मतलब हमको इमीडिएटली वापस
1: ये अगर मैं समझूं एक आम भाषा में, तो पलक झपकते ही आपका हेलीकॉप्टर वहां आना है।
0: हाँ।
1: और वो जो एक मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ सेकंड्स का उसको समय मिलता है, और उसको फिर वापस टेक ऑफ करना।
0: और हम सब ऑक्सीजन यूज कर रहे होते थे, लेवल पे ऑक्सीजन बहुत कम होती है, तो हम सब ऑक्सीजन बॉटल्स में होते थे। मतलब वैसे भी अगर ऑक्सीजन वगैरह मास्क लगी हो, थोड़ा

0: विजिबिलिटी थोड़ी और भी कम हो जाती है।
1: तो सर ये जो खतरा जैसा आपने बताया कि हेलीकॉप्टर लैंड करना भी इतना मुश्किल होता था कि नीचे जो आप बता रहे हैं वहां पर गहरी
0: क्रेवास
1: गहरी दरारें जो आपने बताया क्रेविस, और
0: क्रेवासेस
1: उसके अलावा
0: हाँ अच्छा
1: हेलीकॉप्टर भी आपके ऑर्डर कहता था कि मत मनवाओ मुझसे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक्सीडेंट कर बैठूं। तो
0: बिल्कुल
1: दूसरी तरफ से आपने कहा कि दुश्मन भी आप पर घात
0: एयरबर्स्ट
1: लगाए बैठा
0: एमिनेशन
1: है कि वो
0: हाँ
1: कभी भी आप पर फायरिंग कर दे, तो दैट वॉज अ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर फॉर यू ऑलवेज।
0: एब्सोल्युटली
1: तो
0: एवरी
1: सर
0: डे
1: ये पूरा करियर आपका एज ए हेलीकॉप्टर पायलट खतरों से चैलेंजेस से पूरा भरा रहा, वॉज दैट वेरी टफ स्कैरी और प्योरली मैं कहूं सेटिस्फाइंग जोश और जुनून देश सेवा जनसेवा से भरपूर, क्या कहेंगे आप?
0: मैं आपको मैंने पहले बोला था मेरा 25 साल में सबसे बढ़िया मेरा कैरियर रहा है
1: जी
0: ये 2 साल फ्लाइंग सियाचिन में, सबसे ज्यादा मेरे को लगा मैंने जिंदगी में कुछ किया है। उसके बाद जब कारगिल में मौका मिला फिर लगा एक और मौका मिला है, पर फ्लाई कैरियर इन सियाचिन वॉज माई मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग।
1: तो मतलब कंप्लीटली सेटिस्फाइंग और पूरा जोश और
0: एब्सोल्युटली
1: जुनून से भरा हुआ। सर
0: एब्सोल्युटली
1: आपको कभी डर नहीं लगा?
0: कभी नहीं
1: क्या बात
0: कभी
1: है।
0: भी नहीं
1: तो सर ये जो आपकी बात है, ये जो डेयरिंग सोल्जर हम बताना चाहेंगे अपने लिसनर्स को यहां पर के हमारे साथ बैठे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी, तो उनकी बातें सुन करके और उनसे बात करके मुझे भी जोश भर रहा है। तो
0: पर
1: ये जो
0: मैं ये कहना चाहता हूं कि
1: जी
0: मैं नहीं, सिर्फ मैं नहीं, अनिल नंदा नहीं, आप कोई भी सोल्जर देखिए, कोई भी ऑफिसर देखिए, आप उसको किसी मिशन में भेज दीजिए वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। ये मैं नहीं हूं, ये पूरे सोल्जर की हमारी ट्रेनिंग है। हमारी ट्रेनिंग इतनी टफ है, एक बारी ट्रेनिंग में कोई मेंटल हमारे को ना फिजिकली टफ तो जितना होना होना है हमारे को मेंटली बहुत टफ बनाया जाता है। अब कोई भी ऑफिसर मेरे को
1: जी
0: तो मैं तो फॉर्चुनेट था मैं वहां पर था, मेरी जगह और भी वही पायलट है मेरे फ्रेंड जिनको सीएचए में नहीं फ्लाइंग करने का मौका मिला,
1: अच्छा
0: वो भी अगर मेरी जगह होते तो वही करते जो मैंने किया।
1: क्या बात है सर, मतलब सबकी एक ही मेंटालिटी होती है, एक ही सोच। और सर जैसे मैंने कहा कि ये पूरी तरीके से देश सेवा से भरपूर और जो एक होता है ना कि अपनी पब्लिक के लिए, अपनी आवाम, अपनी जनता के लिए आप हो, तो जनता से भी आप कुछ जैसे ना एक एक सोल्जर है तो वो चाहता है कि उसको भी तो वो अप्रिसिएशन और वो जो है ना वो प्यार मिलना चाहिए।
0: देखो मिलता है, अब आप जब जनता देखती है कि हमारे जनता को कब पता चलता है, जब से कारगिल जैसी लड़ाई होती है,
1: जी
0: जैसे सिंधूर जैसी लड़ाई होती है, ऑप्शन दूर होता है, तब उनको
1: जी
0: लगता है कि कुछ हो रहा है आर्मी के अंदर। उसके अलावा तो जनता सोचती है अभी फौज आर्मी वहां बैठी है अपना काम कर रही है अपनी तनख्वाह ले रही है, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, और
1: जी
0: वो बहुत मुस्तैदी से काम करते हैं तभी हम आराम से बैठते हैं।
1: और जैसे आपने कहा कि वो पूरा डेडिकेशन उनका होता है और सिर्फ एक ही फोकस होता है, वो होता है कि अपने मिशन को पूरा करना और अपने देश की सुरक्षा, उसकी हिफाजत। तो सर हमारी और आपकी बातचीत अभी जारी रहेगी, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपसे ये बताऊं कि हमारे पास मैसेजेस काफी आ चुके हैं, अगर आप कहें तो मैं लेना शुरू करूं।
0: आपकी
1: लेकिन
0: मर्जी आपकी
1: सर
0: जी
1: मैं यहां पर ये एक मैसेज जो मैं शुरू से लेना चाहूंगा, संदेश टू सोल्जर्स शो पर बहुत खूबसूरत गीत सुना रहे हैं और साथ में दिल को छू लेने वाली बेहद खूबसूरत जानकारियां मिल रही हैं, तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। ये है सर यश शिंदे मुंबई से, इन्होंने मैसेज किया है। इसके
0: शुक्रिया
1: अलावा
0: खुशी
1: जय हिंद सर जी, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल हैं ये महाराष्ट्र डहाणू वाणवाण से। इसके अलावा ये मैसेज है, जय हिंद कर्नल साहब, हम जान ये सवाल कर रहे हैं सर, ये हम जानना चाहते हैं रात में हेलीकॉप्टर यूज करना कितना सेव होता होगा। रोहित मेहर हैं ये विजयपुर बारगढ़ ओडिशा से।
0: ऐसा है हेलीकॉप्टर रात को हमारे फ्लाइंग नहीं करते हैं, जो जो हम यूज करते थे चीता और चेतक हेलीकॉप्टर आर्मी के पास है,
1: जी
0: हम रात को फ्लाइंग नहीं करते, पर ड्यूरिंग ट्रेनिंग के टाइम पर हमको जब फुल मून होता है,
1: अच्छा
0: 3 दिन महीने में ट्रेनिंग करनी होती है रात को,
1: ओके
0: क्योंकि ऐसा होता है अगर हेलीकॉप्टर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कहां लैंड करे, रात को कहीं ऊपर न गिर, इसलिए रात को वैसे ही फ्लाइंग नहीं करते। अगर कोई मिशन होता है जैसे वॉर होती है मिशन होता है तो आई एम श्योर वो मौका भी होगा, मेरे साथ नहीं हुआ है, मौका होगा कि रात को आप जा सके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप ट्रेंड ट्रेन पाए
1: ट्रेनिंग है आपको,
0: आपको थोड़ी सी चाहे मूनलाइट मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, बिल्कुल अंधेरे में फ्लाइंग
1: नहीं
0: करना
1: फ्लाई कर
0: हो जाता है।
1: जी ये है सर, जय हिंद, मेरे पास कोई क्वेश्चन तो नहीं है बट मेरे पास एक शेयर जरूरी है, जो सरहद पार रात बिताते है वही हमें सुकून की नींद सुलाते, खुद मौत से आंख मिलाते हैं तभी हम आजादी से मुस्कुराते हैं। सर मुझे गर्व है आप जैसे वीर जवानों पर, जय हिंद सर। इनका नाम है, माय नेम इज सौम्या वर्मा सर,
0: थैंक यू वेरी मच सौम्या,
1: ये लाइनें आपके लिए लिखी इन्होंने,
0: थैंक यू सौम्या जी, आई एम ग्रेटफुल।
1: और ये है सर अनिल नंदा सर जी, आपको मेरा सलाम, आप जो देश के लिए कर रहे हैं वो बहुत ही बड़ा काम है, सोल्जर होना ही एक अलग ही लाइफ है, जय हिंद। ग्राम गेंडा खाली नंबर 1 टनकपुर जिला चंपावत उत्तराखंड से लिख रहे हैं, इनका नाम है सर अनिल कुमार,
0: थैंक यू अनिल जी।
1: और ये सर मैसेज आया है त्रिचुरापल्ली से सर, श्रीरंगम राजे

0: का गुड इवनिंग टू ऑल इन न्यू दिल्ली एआईआर 102.6 सैल्यूट एक्स आर्मी पायलट कम कारगिल वॉर वेटरन ग्रीटिंग्स फ्रॉम श्रीरंगम राजेश और सर इन्होंने बस यही ग्रीट किया है सर
1: थैंक यू वेरी मच राजेश
0: और ये है विकास थापर सर डीएलएफ 2 गुड़गांव से सर ये मैसेज कर रहे हैं आपको वी लव यू अनिल नंदा जी ही इज अ ग्रेट कम्युनिटी वर्कर टू हेल्पिंग द रेजिडेंट्स ऑफ डीएलएफ 2 फॉर मेनी इयर्स ही इज आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ आर आरडब्ल्यूए डीएलएफ 2
1: थैंक यू वेरी विकास जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं
0: जी जी
1: थैंक यू विकास जी
0: जय हिंद सर व्हाट इज द प्रोसीजर टू ज्वाइन एज पायलट टू ज्वाइन द आर्मी सर ये इनका सवाल है ये है प्रवीण जी
1: प्रवीण जी ऐसा है आपको पहले तो अगर आर्मी पायलट बनना है तो आर्मी में आप आर्मी ऑफिसर होना चाहिए उसके बाद आपका पीएबीटी टेस्ट होता है पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट और टेस्ट पे आप क्लियर हो जाते हैं जब आप क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपकी मेरिट बनती है जो आपकी आर्मी सर्विस की प्लस आपके जो टेस्ट के मार्क्स आए हैं उसकी मेरिट लिस्ट बनती है उस मेरिट लिस्ट पे जो आप अगर आप टॉप में आ जाते हैं तो आपको पायलट सेलेक्ट कर लिया जाए
0: सर एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि हमें जैसे इन लोगों ने सवाल किया कि पायलट बनने के लिए इनको कहां से कैसे प्रोसीजर क्या है तो उसके लिए
1: ये आर्मी पायलट की बात कर रहा हूं
0: आर्मी पायलट की जी जी
1: हाँ जी
0: एयरफोर्स की नहीं
1: हाँ जी नहीं नहीं आर्मी मतलब सिविल की नहीं मैं आर्मी और एयरफोर्स का अलग
0: एयरफोर्स का अलग प्रोसीजर है
1: हाँ जी
0: जी तो सर सभी को आईएमए से ही होना
1: नहीं ऐसा नहीं मैं इंडियन मिलिट्री अकेडमी ग्रेजुएशन के बाद होती है उससे पहले एनडीए होता है कोई एनडीए के बाद हम तीन आर्म्स में चले जाते हैं कोई नेवी चला जाता है कोई एयरफोर्स कोई आर्मी में चला जाता है
0: राइट सर
1: मैंने चूज किया था इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो ग्रेजुएशन के बाद में किया था
0: जी
1: तो उसके बाद आर्मी में जाने के बाद आप ऑफिसर बनने के बाद फिर आप फ्लाइंग ब्रांच में जा सकते हो अगर एयरफोर्स में अगर एनडीए में जाते हो तो उसी का डायरेक्ट फ्लाइंग ब्रांच में आपको टेस्ट होगा अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में सिलेक्ट हो जाते हो तो चले जाएंगे
0: राइट सर सर एक मैसेज और है ये और जय हिंद सर मेरे पास अच्छा ये दोबारा से इन्होंने मैसेज किया है उत्तर प्रदेश लखीमपुर खेरी से इन्होंने लिखा था नाम लिखा था जगह नहीं लिखी थी उन्होंने दोबारा मैसेज किया
1: थैंक यू वेरी मच
0: जी और त्रिचुपल्ली श्रीरंगम राजेश ने सर आपको धन्यवाद किया है आपने जो उनको जवाब दिया उनके सवाल का और यहां पर हमारे साथ बातचीत जारी रहेगी हमारे आज के खास मेहमान संदेश टू सोल्जर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी के साथ लेकिन साथ ही साथ यहां पर आपके लिए ये एक्साइटिंग ट्रैक का भी सिलसिला रहेगा जारी आप हैं शाहिद के साथ

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रयाम संदेश टू सोल्जर शाहिद के साथ आप सुन रहे हैं और हमारे साथ हैं हमारे योद्धा, हमारे लोहे का बंदा, अगर मैं सर विद ड्यू रेस्पेक्ट आपको पुकारना चाहूं, लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी। सर ये गीत मैंने बिल्कुल टोटली आपको ही डेडिकेट किया था। वो जो जोश और जज्बा आपने बताया उससे मेरी भी रोंगटे खड़े हो गए।
1: थैंक यू सो मच
0: सर। हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जैसे आपने जब हेलीकॉप्टर पायलट के करियर के बारे में बात करी तो वो अपने आप में बहुत ही डायरिंग और अमेजिंग था। तो जब शहीद जो हो जाते हैं हमारे सिपाही तो उनको
1: मैं बल्कि बताऊं, अच्छा आपने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब एक बार मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था हेलीकॉप्टर्स के बारे में, जब हम उड़ा रहे थे सियाचिन ग्लेशियर में तो हमें पता चला एक गन पोजीशन थी जिसपे एवलॉन्च आ गया था।
0: अच्छा।
1: तो वहां के 14 सोल्जर्स उनके वो उनके नीचे तक उसमें चपेट में आ गए। तो हमको बोला गया कि वहां पर जाइए और उनको लेके आइए नीचे, उनके बॉटल रिमेन्स को। तो आप विश्वास नहीं कर सकते, मेरा पहला एक्सपीरियंस था लाइफ के अंदर जब हम हेलीकॉप्टर्स जा रहे थे हमारे उधर, तो वहां पर जब ये लोग थे और पूरा बर्फ के नीचे से लोग निकाल के रखे उतने साइड पे उन्होंने उसके ऊपर, तो उनको हमने जब पहली बार हेलीकॉप्टर में एक सोल्जर की वॉटर ड्रमेन से मैंने पिछले हेलीकॉप्टर में अपने डाली, हम दो हेलीकॉप्टर में पायलट थे, हमने उनके पीछे डाली तो हेलीकॉप्टर को हम नीचे लेके आते हैं। हमारा एम ये रहता है, इंडियन आर्मी का एम ये रहता है कि वॉटर ड्रमेन्स फैमिली तक पहुंचे ताकि उनके अच्छे से लास्ट राइड्स हो सके। जब मैं पहली बार मॉर्टल रिमेन्स लेके हेलीकॉप्टर से नीचे आ रहा था, आप विश्वास नहीं करोगे, आपने जैसे रोंगटे खड़े होने की बात की है ना, मेरे रोंगटे तब खड़े हुए थे लाइफ में। और मैं बार बार मुड़ मुड़ के देख रहा था, मेरे हेलीकॉप्टर में पीछे किसी के मॉर्टल रिमेन्स पड़े हैं, बार बार ऐसे देख रहा था। जब हम लैंड कर रहे थे जहां पर, पूरी दोनों साइड पे आर्मी के बहुत जवान ऑफिसर्स जेसीओस खड़े थे और सब सैल्यूट कर रहे थे टू रिसीव दैट मॉर्टल रिमेन्स। एक एक करके हम सब मॉर्टल रिमेन्स को नीचे लेके आए, फिर वहां से आगे Mi-17 से, फिर वहां से चंडीगढ़ वगैरह बाकी दूसरे एयरक्राफ्ट में। तो बॉडी मॉर्टल रिमेन्स ये फैमिली के लिए बहुत जरूरी है। तो लाइफ में ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था कि मतलब आई वुड से बहुत हार्ट
0: टचिंग। आपके साथी सिपाही जवान जब वो शहीद हो गए तो जाहिर है वो एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है।
1: एब्सोल्युटली
0: जी, उन्होंने देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दी।
1: हाँ जी।
0: और शहीद हुए सर। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो कारगिल युद्ध आपके सामने ही हुआ, तो क्या वजह रही, मतलब कैसे समझे हम के कारगिल युद्ध क्यों हुआ, क्या हालात थे, क्या सिचुएशन थी, कैसे हुआ सब?
1: शायद मैं जल्दी से बताऊंगा कारगिल हुआ क्यों था। मुझे पता है ज्यादा हम लोग के पास टाइम अब भी नहीं है, बेशक आधे घंटे से ज्यादा। कारगिल हुआ क्यों था, ऐसा है कि हर साल हमारी जो आर्मी है अपने एरिया में कारगिल की हिल्स ऑक्यूपाई करती है
0: जी।
1: पाकिस्तान वाले अपनी हिल्स ऑक्यूपाई करते हैं। इस कारगिल का ऐसी जगह है जहां पर पाकिस्तान वाले विंटर्स में अपने वापस चले जाते थे और ये इंडियन आर्मी नीचे आ जाती थी, बिकॉज पूरे विंटर्स के ऊपर सोल्जर्स को उतना मेंटेन करना उस हाइट्स पे बहुत एक्सपेंसिव है।

0: हम सीएचएन में करते हैं, हमें पता कितना करोड़ों का राशन, ऑयल, दवाइये, डॉक्टर्स बैठे. तो हम कारगिल में, हम पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी नहीं करती थी. मुशर्रफ ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके जो पाकिस्तान ने क्या किया कि इस बारी जब धोखा दिया इंडिया को, अगस्त 1998 की बात कर रहा हूं, कारगिल 99 की बात आपको याद होगा, 98 अगस्त की बात कर रहा हूं, जब इंडियन आर्मी, अब हम नीचे उतर आए, वो लोग पीछे चले गए. हमारे आने के बाद वो लोग वापस आए, वापस आए अपने एरिया से, हमारे एरिया में आके हमारी हिल्स पूरी, उन्होंने हिल्स कैप्चर कर ली थी. तो वो जब कैप्चर कर ली तो हमको आहिस्ता आहिस्ता पता चला, जब फरवरी मार्च के अंदर जब हमारी पेट्रोलिंग पार्टी, अगर आपका नाम याद हो, कौरव सौरभ, कैप्टन सौरभ कालिया
1: जी,
0: ये सौरभ कालिया अपने 4 जाट के थे, 5 जवानों के साथ पहले पेट्रोल के लिए जा रहे थे, तो उनको कैप्चर किया था, उनको टॉर्चर करके डेथ किया गया, मतलब मारे गए थे बेचारे. और सेक्टर्स में भी हमको, बाकी जो गडरियाज वगैरह, उन्होंने बताया कि आपकी तो पूरी दूसरी तरफ की आर्मी बैठी हुई है, ऐसी इंटेलिजेंस खबरें आनी शुरू हुई. तब हमें पता चला मार्च 99 में कि आर्मी, पाकिस्तान आर्मी वाले हमारे एरिया में बैठे हैं. तो हमको बोला गया कि हमारी यूनिट, हमारे कर्नल गुप्ता हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे, मैं उनका 2IC था, हमको बोला गया कि आप अपने यूनिट लेके पहले बोफोर्स रेजिमेंट आप कारगिल में जाइए. हमारी 6 गन्स सीएचएन में ऑलरेडी फायर कर रही थी, 6 गन्स कारगिल में ऑलरेडी थी. रेजिमेंट हेडक्वार्टर 10-6 गनों को और बोला कि आप जल्दी से जाइए. पहली बोफोर्स रेजिमेंट थी हमने जो क्रॉस किया
1: जी. तो कारगिल युद्ध के योद्धा लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी, 1999 में जब कारगिल में तोपों ने आसमान का सीना चीर कर रख दिया, उस समय आप अपनी यूनिट के सेकंड इन कमांड थे सर, राइट?
0: एब्सोल्युटली.
1: तो आपकी ही यूनिट ने सबसे ज्यादा गोले भी दागे, और कितने गोले दागे सर, वो पूरा एक रिकॉर्ड है अपने आप.
0: हमारे पास जो हमने कारगिल के अंदर फायर किया उस टाइम पर करीब 9,200 गोले फायर किए थे हमने. हमारी यूनिट पहली यूनिट थी बोफोर्स यूनिट जो कारगिल वॉर के अंदर गई थी. जैसे मैंने आपको बताया, 6 गने हमारी सियाचिन में थी और 6 गने कारगिल में थी, तो वो भी लगातार फायरिंग कर रही थी. तो टोटल 2 साल में तो हमने 18,000 गोले फायर किया, ये रिकॉर्ड है. आज तक किसी ने पहले नहीं किया था, बाद में नहीं किया, पर ड्यूरिंग कारगिल वॉर हमने 9,200. आप विश्वास नहीं करोगे, जब हमारी सारा दिन सारी गने फायर करती, हम पास में बैठे होते तो हम बहरे हो चुके थे अभी भी, बल्कि हमारे को फिजिकली इफेक्ट हुआ. आप गनर्स और आर्मर्ड कोर ऑफिसर्स को देखोगे या जवानों को देखोगे, उनका हार्ड ऑफ हियरिंग हो जाती है टुवर्ड्स द एंड. तो हमने लगातार फायरिंग किया.
1: तो वो सर जो मोमेंट्स रहे हैं वो भी अपने आप में, जैसे आपने बताया कि वो आपके सामने सब कुछ हो रहा था, वो वॉर जोन में जब आप थे, तो वो जो कारगिल का जो एक्सपीरियंस आपका था उसके बारे में कुछ बताइए, कुछ जो सिचुएशंस थी वो क्या थी उस वॉर जोन में. और एक चीज और भी थी जो मैं जानना चाहता था आपसे, मैंने जो आपसे पूछूंगा कि व्हाट वर द रेड हिल्स, रेड हिल्स क्या है?
0: मैं बताता हूं आपको. ऐसा है कि आप जल्दी से संक्षेप में बताता हूं. तो हमने कारगिल क्रॉस किया था इन मंथ ऑफ मई, जबकि पूरी जुलीला पास 15-16 फीट बर्फ थी. हमको बोला गया था अभी निकलो वहां से, बॉर्डर रोडवेज काट रही थी बर्फ और हमारी गने आगे जा रही थी. फर्स्ट रेजिमेंट टू गेट इनटू द कारगिल. जब हम द्रास पे पहुंचे तो वहां पर कमांडर उस एरिया के आके आपको बताया, ये तो सब एरियाज में पाकिस्तानी लोग बैठे हुए. हम लोग सब हैरान हो गए. उन्होंने हमको मैप दिखाया तो सब हिल्स के ऊपर, हमारी जो हिल्स है इंडिया के हिल्स के ऊपर, पाकिस्तानी आके बैठे हुए थे. तो हमने पूरा का पूरा मैप रेड था.
1: अच्छा,
0: हमारे ढोंगटे क्यों खड़े हो गए कि हमारी सब हिल्स जो हमारी हैं, टाइगर गोल्ड हो या 5.1540 हो या अदर हिल्स, सब हमारी हिल्स पे पाकिस्तान बैठा हुआ है. तो उनको निकाला और अगले दिन हम ओपन में बैठे हुए हैं जैसे हमारी बाकी सोल्जर्स और ऑफिसर्स बैठे हैं, तो पता चला वहां से पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी हमारे एरिया से. सो हमारे को तब बहुत पता चला कि हमको ये तो बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं.
1: इसलिए वो जो चूंकि ऑक्यूपाइड थी चारों तरफ से हमारी ही हिल्स,
0: हमारी
1: हिल्स, रेड हिल्स का नाम दिया गया.
0: मैंने रेड हिल्स का नाम दिया, मैंने बोला है कि उनको पूरा रेड मार्क था मैप के अंदर, पूरा एरिया और पूरा हिल्स रेड मार्क थे. रेड मार्क्स मीन एनिमी और ब्लू मीन्स हम. अगर वो सारी रेड थी तो इसका मतलब एनिमी हमारे एरिया में बैठा हुआ है, दैट्स व्हाई आई वाज कॉलिंग रेड.
1: सर वहां की कोई ऐसी आपके साथ कोई इंसिडेंट जुड़ा हुआ है जो आपको आज भी याद आता हो, कोई ऐसी याद उस मोमेंट की, उस वॉर जोन की, कारगिल वॉर की?
0: ऐसा है कि मतलब हमको ये था कि जैसे रोड क्रॉस, हमने दराज से हमको कारगिल जाना था और बीच में पाकिस्तानी पोस्ट हमारी रोड्स को देखती थी, मतलब रोड देख रही थी, और गन्स हमारी इतनी बड़ी बड़ी बोफोर्स गन को लेके जाना, तो हमारे जो ऑफिसर्स जवान्स को लेके जाना रात को, उनको तो पता था पाकिस्तानी यही रोड है, ऊपर एक ही रोड थी ऊपर जाने के लिए. उन गन्स को बिना आवाज किए उस रोड से क्रॉस करना बहुत मुश्किल काम था, और मतलब

0: यानी कभी भी कोई भी अटैक आप पर हो सकता
1: वो होता था, वो फायर करते थे,
0: अच्छा
1: इसीलिए कोशिश होती थी रात को जाओ, रात को जाओ तो दिखाई नहीं देता था, दिखाई दे तो मतलब ऐसा है कि इतनी चौड़ी गन, ये छोटी गन तो है नहीं, छोटी सी गाड़ी छोटी थी रोड पे, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें तो थी नहीं, मेरा मतलब टाइम वो बहुत टफ था, पर हर बंदे में इतना जज्बा था, और हमको बोला गया कि जैसे पता चला ज्यादा बुरा हाल है तो आप आगे चलिए, और बोफोर्स की यूनिट और आ रही है, हमारे बाद 9 यूनिट और आई, तो ग्रेजुअली हम लोग आगे आगे ग्रेजुअली सेटल होना शुरू हो गया। तो उसी दिनों उन्हीं दिनों में हमारे को पता चला इस जगह से बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही है, तो हमारी बोफर्स ने वहीं से दराज से एंगेज किया, तो पहले कुछ दिनों के अंदर 16 से 19 मई की बात है, हमने 17 पाकिस्तानी सोल्जर उन दिनों में मार दिए, उन दिनों में उनका कैजुअलिटीज कर दी,
0: अच्छा,
1: और जहां से फायर आ रहा था मीडियम मशीन गन थी उसको भी उड़ा दिया, और मतलब पहले दिनों में कितनी सक्सेस मिल गई, फिर आगे आगे उकल के तो बहुत सक्सेस मिली।
0: तो मतलब जाहिर है जो सोल्जर्स जो जवान थे उनका जोश पूरी तरीके से हाई था, और वो पूरी तरीके से दुश्मन को खदेड़ने के लिए तैयारी करके गए थे कि अपनी सरहदों से उनको बाहर निकाल।
1: शायद जी मैं आपको बताना चाहता हूँ जल्दी से बात की, ऐसा है कि हर हिल्स के ऊपर
0: जी
1: इन्फेंट्री अटैक जाता था, इन्फेंट्री अटैक जाता था, पूरा प्लानिंग से जाता था, पूरा ब्रिगेड डिवीजन सब प्लानिंग होती थी, आज इस हिल को हमने पाकिस्तानी पे अटैक करना है, तो इन्फेंट्री बटालियन को काम दिया जाता, तो वो हिल्स होती है ऊपर, जवानों ने फायर जाना है ऊपर अटैक करना है, बहुत मुश्किल होता है नीचे से ऊपर अटैक करना, कोई ऊपर बैठ के अगर पत्थर भी फेंकेगा ना आपको चोट लगेगी बहुत बुरी तरह। हमारे जो ऑफिसर्स जेसीओ जवान वो ऊपर फायर करते थे, हम लोग क्या करते थे बोफोर्स या और आर्टिलरी यूनिट्स पहले उस जगह को पूरा पल्वराइज करते थे, उसको पूरा हम दबाते थे ताकि इतना फायर करते रहे कि पाकिस्तानी बाहर आके ओपन हमारे पे लोगों फायर ना कर सके। हमारे लोग चल रहे हैं ऊपर से हम फायर करते जा रहे हैं, तो पहले उनके पास पहुंचने से पहले हम आर्टिलरी फायर उठाते थे तब वो हमारे लोग अटैक करते थे। तो ऐसे होता था कि हर पता चलता आज यहां इस हिल पे फायर जा रहा है, इस हिल पे अटैक जा रहा है, इस हिल पे अटैक जा रहा है, तो हम वेट ही करते रहते थे क्या हुआ क्या सक्सेस सिग्नल, हमारे जो लाइट जो वेट कर रहे थे अच्छा। हमको सक्सेस मिला है कि नहीं
0: जी,
1: दिस वाज एवरी डे लाइक ए वॉर, एवरी डे
0: एवरी डे। और सर ये लगातार बहुत दिन
1: ये लगातार चलता रहा, ये मतलब जून तक एंड तक चलता रहा।
0: और सर इस दौरान जो फौजियों का जो मनोबल था सिपाहियों का
1: बहुत हाई था, बहुत हाई था, बहुत हाई।
0: तो सर वो फिर कैसे कनेक्ट रहते थे जैसे परिवार से, तो फिर जाहिर याद आती है तो कोई चिट्ठियां या कोई कम्युनिकेशन कैसे करते थे?
1: ऐसा हमारे को ना हफ्ते में एक बार फोन मिलता था, थोराया फोन मिलता था, थोराया सैटेलाइट फोन है,
0: तो कुछ अच्छा स्पेशल फोन होता,
1: स्पेशल थोराया फोन एक आया, एक यूनिट में आता, आप अपनी फैमिली में एक हफ्ते में एक बार बात कर सकते। हमारी फैमिली तो सारी बाप बाप वाइफ बच्चे सारे टीवी से जुड़े होते थे, शायद कुछ खबर आ जाए, तो मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे उन जमाने में, तो थोराया फोन मिलता आपको हफ्ते में एक बार बात करने के लिए, कुछ मिनट के लिए अपनी फैमिली से बात करते थे, वो सुन लेते थे माँ बाप आवाज अच्छा। फैमिली सुन लेते को अच्छा लगता। इधर से चिट्ठियां इतनी आनी शुरू हो गई, शायद ये बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है, पूरा देश ये टीवी की लड़ाई थी, आपको पता ये टीवी की लड़ाई थी, टीवी में सब दुनिया देख रही थी लड़ाई, तो लोगों ने इतनी चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी, मिठाइयां भेजनी शुरू कर दी सोल्जर्स के लिए,
0: अच्छा।
1: अच्छी अच्छी चीजें, पर उन्होंने क्या हुआ सामान ऊपर आना शुरू हुआ तो ट्रैफिक जाम होना शुरू हो गया, जहां हमको एम्यूनिशन चाहिए था गाड़ियों का
0: वहां
1: पर चिट्ठियों वाले ट्रक रोके, फिर उनको रोकना पड़ा।
0: अच्छा, तो सर ये फिर मोमेंट मतलब जाहिर है जो सोल्जर है वो फ्रंट पर है लड़ रहा है दुश्मन से, तो उसको भी थोड़ा मोटिवेशन तो चाहिए,
1: बहुत मोटिवेशन, बहुत मोटिवेशन, मतलब हर छुट्टी तो सबकी कैंसिल
0: थी, तो कैंसिल सब।
1: मैं आपको बताता हूँ एक इंसिडेंट बताता हूँ मेरे दिमाग में जो आया है, एक हमारे यूनिट के अंदर एक आदमी आया हमारे पास कमांडिंग ऑफिसर साहब के पास, की कहता है कि सर मुझे छुट्टी जाना है, लड़ाई चल रही है छुट्टी जाना, कहते सब मजाक कर रहे तो छुट्टी मांग रहा है इस टाइम पर लड़ाई में, कहते बहुत जरूरी बात है मेरी माँ बहुत बीमार है अगर मैं नहीं गया तो वो मर जाएगी। तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने बोला भी इतनी बात है तो चले जाओ भाई, कारगिल से बेचारा श्रीनगर आया, श्रीनगर से जम्मू, जम्मू से आगे, जम्मू से आगे घर गया, चार पांच गया था 15 दिन के लिए,
0: अच्छा।
1: चौथे दिन में हमने देखा वापस आ गया यूनिट के अंदर, हमने पूछा तू वापस कैसे आ गया, कहता साहब मैं गांव पहुंचा बहुत जूते पड़े मेरे को मेरे को गांव वालों ने इतने जूते मारे, कहते पूरी लड़ाई लड़ रहा है देश और तुम घर में अपनी माँ के लिए, तेरी माँ को हम संभालेंगे तो अपना देश के लिए लड़।
0: क्या बात है सर, क्या बात है।
1: और मेरे साथ हुआ शाह जी, मेरे साथ हुआ ऐसा, मिसेस चोना मेरी बच्चों के स्कूल की प्रिंसिपल थी आरकेपुरम की
0: जी,
1: उनकी मुझे चिट्ठी आई कि कर्नल साहब आप देश के लिए लड़िए, बच्चे मैं आपकी संभालूंगी, मिसेस चोना ने मेरे को चिट्ठी लिखा।
0: सर ये है मतलब ये जो जज्बा देशवासी,
1: पूरा देश आपके साथ,
0: अपने सिपाहियों के साथ, अपने सोल्जर्स के साथ,
1: पूरा खड़ा होता है देश आपके साथ।
0: बिल्कुल, सर आपने बात की

0: चिट्ठियों की, कम्युनिकेशन की, के सोल्जर्स को, सिपाही को जब घर से कोई चिट्ठी आती है या वो कम्युनिकेशन करना चाहता है तो उस पर क्या असर होता है. मुझे था ये जहन में कि मैं ये गाना चलाऊंगा और आपकी पसंद का भी यही है.
1: थैंक यू वेरी मच.

1.6 नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स चल रहा है। मेरे साथ मेरा नाम है शाहिद और हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल

0: 1.6 नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स चल रहा है। मेरे साथ मेरा नाम है शाहिद और हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी। सर, हम कारगिल वॉर पर बात कर रहे थे और हम वहां पर आपकी बातों में लग रहा था जैसे हम उसी मोमेंट पर उसी वॉर जोन में पहुंच गए हैं। तो सर, कुछ ऐसी यादें भी हैं जो आपको आज भी कुछ खूबसूरत यादें भी हैं? जाहिर है सब बहुत ही वो जो टेरेन था, वो जो सिचुएशन थी, वो बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ यादें आपके साथ जुड़ी
1: हैं। बिल्कुल है, मेरे को बहुत प्राउड फील करता हूं जब मेरे को ये बताना चाहता हूं कि आपको कि उस एरिया में जो कमांडर साहब थे हमारी यूनिट के, बहुत काबिल ऑफिसर ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह जो 70 ब्रिगेड कमांड कर रहे थे, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है कारगिल वॉर में। बटालिक सेक्टर के कमांडर थे, बहुत बड़ा बढ़िया काम किया हमारी यूनिट में, उनको पूरा का पूरा सपोर्ट किया, अपनी ही उनकी अपनी यूनिट थी। तो हमारी यूनिट 307 मीडियम ने बहुत अच्छा काम किया कारगिल के अंदर और पूरा अपने कमांडर साहब को भी पूरा सपोर्ट दिया। प्लस उसके वॉर के अंदर हमारे कई ऑफिसर्स को अवार्ड भी मिले। एक हमारे कैप्टन साजू चेरियन है, उनको सेना मेडल मिला। अच्छा। एक मेजर दैया, उस टाइम मेजर दैया, बाद में कर्नल दैया, उनको और एक सी विजन को मेंशन इन डिस्पैचेस मिले। मेजर झुलका मिला, उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मिला। एक कैप्टन अतुल है, उनको GOCNC कमेंडेशन कार्ड मिला। हमारी खुद यूनिट को नदर कमांड आर्मी कमांडर का कमेंडेशन कार्ड मिला। तो हमारी काफी यूनिट ने काफी अचीवमेंट की,
0: बहुत अचीवमेंट,
1: बहुत अच्छा काम किया।
0: बिल्कुल सर, हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपने ये जो सर्विस दी अपनी एज एन हेलीकॉप्टर पायलट और फिर उसके बाद आपने कारगिल वॉर में भी जो भी अपनी कंट्रीब्यूशन दी, उसके बाद सर फिर आपने मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के लिए भी काम किया तकरीबन 5 साल और उससे ज्यादा, तो उसके बारे में थोड़ा सा
1: मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में मैंने 5 साल काम किया और मैं काफी अच्छे काम किया। मैंने डिफेंस प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसीजर्स में मैंने काम किया। DPP 2006 में मैंने बनाई है प्रोसीजर, बैठ के बाकी लोगों के साथ मिलकर हमने पूरे प्रोसीजर्स बनाए प्रोक्योरमेंट वगैरह के बाद। प्लस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन में था तो मैं डिफेंस सेक्रेटरी, डिफेंस प्रोडक्शन वगैरह के साथ, इन लोगों के साथ मैं आउट ऑफ कंट्री भी बहुत ट्रैवल किया। जितनी बड़ी बड़ी वर्ल्ड की एग्जीबिशन, जितनी नेगोशिएशंस विद पब्लिक सेक्टर कंपनीज और पूरा के पूरा हम लोगों ने काफी काम किया। 5 साल का बहुत मुझे अच्छा एक्सपोजर मिला। उसकी वजह से फॉरेन कंपनीज ने भी मेरे को देखा कि मैंने अच्छा काम किया, तो उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया। फिर मैंने उसके बाद फिर फॉरेन अपनी, क्योंकि दिल्ली छोड़ने का मेरी मजबूरी थी आर्मी छोड़ने की। अच्छा। दिल्ली में ही रहना था, बच्चे छोटे थे, तो मेरे को इसलिए फिर मैंने आर्मी छोड़ी और फिर मैंने प्राइवेट सेक्टर में आ गया। मैं जॉब शुरू किया
0: आपने। फिर सर आपने कोविड के दिनों में भी बहुत लोगों की हेल्प करी और आगे बढ़ करके मदद करने में, ब्लड डोनेशन में, उनको राशन और बाकी चीजों में भी, तो वो किस तरीके का एक्सपीरियंस था उस दौर में? बहुत ही एक डर वाला जो माहौल बना हुआ था।
1: शायद मैं बताता हूँ, मेरे ना 15 साल ये जो मेरे जॉब खत्म करने के बाद मैं अपने, तो मैंने बोला अभी बहुत हो गया, बस 40 साल मैंने नौकरी कर ली है, अभी थोड़ा बहुत समाज सेवा भी करनी चाहिए। समाज सेवा हमारे पूरे खानदान में, मेरे फादर, मदर, मेरी बहनें, ब्रदर बहुत समाज सेवा करते हैं अपने अपने लेवल पे। मैंने सोचा हम कुछ समाज सेवा करना चाहिए, तो मैंने RW का एक जो जरिया मिला जिसकी मदद में हमने RW में आया और RW में लोगों के साथ जुड़ना शुरू किया, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम ठीक करनी शुरू की। फिर कोविड का टाइम आ गया। कोविड के टाइम पर ऐसा था जो कोई घर से नहीं निकलना चाहता था। हम लोग कुछ थे जो RW के मेंबर्स थे, वो पूरे दिल से, पूरे जोश से घर से निकलते थे। पूरी इतनी हमारी बहुत बड़ी कॉलोनी है, उस कॉलोनी को पूरा संभालने के लिए हम लोग, किसी को तो आगे आना था, तो हमारे RW के सारे मेंबर्स सारे बाहर आते थे सिक्योरिटी के साथ, हम गेट्स को मैनेज करना और कोविड ऐसी चीज थी, आदि हर बच्चा ये चाहता मेरे माँ बाप घर से ना निकले, माँ बाप चाहते बच्चा घर से ना निकले, पर हमारी ड्यूटी थी। तो हम लोगों को राशन पहुंचाना, लोगों को जिनको ब्लड डोनेशन, जिनको ब्लड की जरूरत, आप पता होगा ब्लड की इतनी शॉर्टेज हो गई थी, हॉस्पिटल बेड्स की इतनी शॉर्टेज थी। हमारी कॉलोनी में हमारे RW ने ऑक्सीजन बॉटल्स तक किया, अपना एक टेम्परेरी कैंप लगाया, मतलब बहुत ज्यादा हम लोगों ने मिलकर काम किया, लोगों के राशन बांटे, किसी ओल्ड एज पीपल को, ओल्ड कपल को, किसी को या किसी सीनियर सिटीजन को किसी चीज की भी जरूरत होती है, मेडिसिन, खाना पीना, हम उनके घर में पहुंचाते थे। तो बहुत सेवा की। तो उससे क्या, मैं एक के बाद मैं 3 टाइम मैं RW में लगातार आता जा रहा हूँ, क्योंकि लोगों का प्यार बना हुआ है, तो मुझे चाहते भी है कि मैं वापस आऊं। तो
0: सर उनका प्यार और आपकी सेवा लगातार अभी भी बने हुए हैं, आप अभी भी लगातार सेवा कर रहे हैं।
1: हाँ, वो चाहते हैं मैं जुड़ा रहूं तो मैं जुड़ा, जब चाहेंगे नहीं होंगे तो मैं बाहर चला जाऊं।
0: लेकिन सर आपने इतना सब जो अपने पूरे करियर में किया वो मतलब बड़े अचीवमेंट्स हैं, वो बहुत

0: रिमार्केबल हैं, लैंडमार्क्स हैं वो। तो इसमें सर आपकी फैमिली का भी जरूर सहयोग और सपोर्ट और हेल्प रही होगी, किस तरीके से आपको वो लगातार इन सब चीजों के लिए, भले ही वो वॉर जोन में आप थे तब, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर्स,
1: मेरे माँ बाप, बहन भाई, मेरे मतलब मेरी वाइफ रश्मि, मेरे तीन बच्चे लड़के हैं, मतलब तीन बच्चे हैं, अंकित और शिवेन और मेरी बेटी साहिबा है और मेरी डॉटर रिलोदृषिका है। हम सब ने मतलब पूरा का पूरा, क्योंकि मैं ये काम करता था तो वो पीछे से सपोर्ट करते हैं, अपनी तरफ से जो वो कर सकते हैं वो करते हैं, मेरे को सबकी सपोर्ट है लोगों।
0: बिल्कुल सर,
1: आई एम ब्लेस्ड मैन।
0: बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो सपोर्ट होती है खासतौर पर फैमिली की, तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग होती है और वही आपको आगे बढ़ने का हौसला भी देती है।
1: Absolutely.
0: तो यहां पर सर मैं अभी तो हमारे पास जो समय बहुत कम बचा है, लेकिन फिर भी चलते चलते ये जो मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं जरूर मैं आपसे शेयर करूं।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: ये टेक्निकल ग्रेजुएट है, ये कहते हैं कि सर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ग्रेजुएट विच ब्रांच ऑफ आर्मी कैन आई ज्वाइन?
1: He can join every branch. As an engineer, he can join as a technical. When okay. he comes, there's a special called technical branch in the army. He can apply for that.
0: Okay.
1: And as an engineer, he can join that technical branch.
0: Right, sir. और सर ये मैसेज है मंसूर अली का बीकानेर से, और ये आपको नमस्कार करें। नमस्कार सर।
1: नमस्कार जी।
0: और ये है कर्नल अरिंदा, इज वेरी हंबल पर्सन एंड वेरी हेल्पफुल, सल्यूट टू हिम, रिगार्ड्स विनोद तायल है सर, ये डीएलएफ गुड़गांव से। प्लीज एयर दिस मैसेज ऑन योर एफएम, आई एम ऑनलाइन, थैंक्स।
1: थैंक यू वेरी मच विनोद जी।
0: कर्नल नंदा, वाह वाह कर्नल नंदा, ग्रेट ऑफ यू।
1: थैंक यू वेरी मच विनोद जी।
0: मल्टीपल मैसेजेस इन्होंने किए सर आपकी तारीफ में,
1: और ये है तारीफ सर, क्या था? आप उसका प्यार है सबका।
0: बिल्कुल सर। ये सर है डॉक्टर दीपक जोशी। सर ये अच्छा, ये शायद रेडियो डॉक्टर के लिए मैसेज कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट चाहते हैं, और ये है सर नमस्कार, जय हिंद यशवंत, आडमुटे हैं धाराशिव महाराष्ट्र से सर ये।
1: हाँ सब शीता जी।
0: और सर ये है हमारा देश का फौजी भाइयों की हमेशा सैल्यूट, और देश हित ना रचने के लिए उनका जीवन त्याग में जीवन है, बहुत प्यार से सैल्यूट करता हूं मैं। कर्नाटक स्टेट विजयपुर डिस्ट्रिक्ट अराकेरी गांव से पंडित चनप्पा सौंदर्य तेजस्विनी सरावद।
1: तो सरावद साहब थैंक यू
0: जी, ये आपको सैल्यूट करते हैं और कहते हैं सोल्जर भाइयों का हमारा सैल्यूट, हमारा भारत माँ की रक्षा सभी क्षेत्र में उनके बलिदान का श्रेष्ठ जीवन का संदेश है।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: और सर ये एक और मैसेज मैं पढ़ दूं, फिर इसके बाद समय बिल्कुल खत्म। मेरी तरफ से सभी सोल्जर्स को जय हिंद जय भारत, रंजीत मस्ताना रायबरेली।
1: थैंक यू।
0: तो सर ये सब बहुत ही प्यार भरे मैसेज आपके लिए, प्यार का इजहार है सर हमारे इस शो में, और हम आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद करना चाहेंगे यहाँ पर चलते चलते।
1: थैंक यू।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अली नंदा जी, जोश से भरपूर हमारे सोल्जर हमारे साथ रहे सर।
1: थैंक यू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक।
0: थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।
1: थैंक यू।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। दोस्तों, मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त यहां पर मौजूद हैं शबाब अनवर। हम लेकर आ गए आपके लिए शाम के 5:30 बजे ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लाइव अपडेट्स। और आपको बता दें कि आज के दिन के एथलेटिक्स के इवेंट्स की फाइनली शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, दीज इवेंट स्टार्टेड ऑफ विद द मेन्स 100 मीटर्स इन विच अनिमेश खजूर एंड गुरिंदर वीर सिंह फ्रॉम इंडिया क्वालिफाइड फॉर द मेन्स 100 मीटर सेमीफाइनल एट द एशियन गेम्स। अनिमेश खजूर फिनिश थर्ड इन heat and clocked 10.36 seconds to finish behind Thailand's Puripol Boonsoorn and China's Zheng Kili. Khujur's third place finish was enough to earn him a qualification for the semi-final. वहीं पर अगर बात करें गुरिंदर वीर कीत, उन्होंने फिनिश किया सेकंड इन हीट 4 ऑफ राउंड 1। गुरिंदर वीर क्लॉक 10.38 सेकंड्स टू फिनिश बिहाइंड ओमान ज़मलहम अल बलूशी हु वन द हीट इन 10.29 सेकंड्स। हिज सेकंड प्लेस फिनिश वाज इनफ टू अर्न हिम अ प्लेस इन द सेमीफाइनल। तो उम्मीदें अब इन दोनों से रहेंगी सारी ही भारतीयों की कि हमें अंत में एक मेडल की यहां से सिर्फ गुंजाइश नहीं, मेडल लेकर भारत में ये दोनों में से कोई एक तो जरूर वापस आए। अब बात करते हैं वहीं पर वुमेन्स हेप्टाथलॉन के शॉटपुट में, जहां पूजा हैज मूव्ड ऑन टू द फोर्थ पोजीशन। इंडियाज पूजा मूव्ड ऑन टू द फोर्थ पोजीशन आफ्टर रजिस्टरिंग अ थ्रो ऑफ 11.44 मीटर्स इन अ थर्ड अटेम्प्ट। पूजा हैड रिकॉर्डेड 11.20 मीटर्स इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट बिफोर फाइनली मैनेजिंग 9.91 मीटर्स इन अ सेकेंड। लेकिन क्योंकि उनका 11.44 मीटर का तीसरा अटेम्प्ट उनका सबसे बेस्ट था, उसको कंसिडर किया जाएगा एंड शी इज मूव्ड ऑन टू द फोर्थ। एथलेटिक्स ट्रिपल जंप के अंदर भी निहारिका वशिष्ठ की कुछ ज़्यादा बहुत बेहतर अच्छी शुरुआत नहीं रही है। फर्स्ट अटैम्प्ट उनका फाउल हो गया था, लेकिन उसके बाद अगर बात करें आशा लांगू की कि तो उनका एथलेटिक्स ट्रिपल जंप में पहला अटैम्प्ट ही बहुत अच्छा गया था 13.43 का, जिसकी वजह से क्योंकि उनका

0: दूसरा अटेम्प्ट फाउल कंसिडर हो गया था, बट पहला अटेम्प्ट इतना अच्छा होने की वजह से शी स्टिल इन दैट सेफ्ड बफर वेयर शी कैन होप टू गेट क्वालिफाइड इफ she is able to either better a third attempt or possibly this in itself achieves her that. अभी तक की एथलेटिक्स की यही अपडेट्स हैं आपके लिए दोस्तों, लेकिन ये अपडेट्स लगातार जारी रहेंगे हर घंटे में, क्योंकि एथलेटिक्स के अंदर और भी अपडेट्स आते रहेंगे शबाब।
1: उधर स्क्वाश की बात करें तो ये भी एक ऐसा खेल है जिसने आज पूरे दिन भारत की पदक की उम्मीदों को जिंदा रखा है। पूरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अनाहत सिंह, तन्वी खन्ना, अभय सिंह और वीर चोटरानी ने एशियन गेम्स के स्क्वाश स्पर्धा के एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली शानदार प्रदर्शन करते हुए, जबकि जोशना चिनप्पा और बेलावन सेंथिल कुमार की जोड़ी मिश्रित युगल के अंतिम आठ में पहुंच गई। जूनियर विश्व चैंपियन और पदक के दावेदार अनाहत ने महिला एकल में सिंगापुर की वाई यिन ओ उयोंग को महज 19 मिनट में 3-0 से यानी कि 11-4, 11-5 और 11-17 से हराकर अभियान की शानदार शुरुआत की थी और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक खास बात यह है कि सेमीफाइनल में पहुंचने पर भी तय नहीं होगा पदक, ये खास बात है, कुछ इसमें तब्दीली आई है, हम बताएंगे आपको। इसके बाद तन्वी ने भी सिंगापुर की वाई यिन ओ उयोंग को 39 मिनट में 3-1 यानी कि 5-11, 11-4, 11-5, 13-11 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इन नतीजों के साथ महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में अनाहत और तन्वी के बीच ही मुकाबला तय हो गया है, यानी दो भारतीयों के बीच। पिछले एशियन गेम्स के विपरीत इस बार स्क्वाश की एकल स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ियों का पदक पक्का नहीं होगा। कांस्य पदक के लिए सेमीफाइनल में हारने वाले दोनों खिलाड़ियों के बीच तीसरे और चौथे स्थान का मुकाबला खेला जाएगा, ये खास बात है। तो काफी दिलचस्प रहेगा, एक बार फिर दो भारतीयों के बीच मुकाबला भी हमें को देखने को मिलेगा। तो आज का पूरा दिन स्क्वाश खिलाड़ियों ने काफी जबरदस्त प्रदर्शन किया।
0: जी शबाब, नाइसली पुट, एंड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बॉक्सिंग, जहां पर सुमित कुंदू ने आज भले ही अपने पहले दो बाउट्स की अच्छी शुरुआत करी हो, लेकिन तीसरे बाउट में चोटिल हो जाने की वजह से ही गॉट फॉरफीटेड और उनके जो ओपोनेंट थे इराक के अली अलसारे वो ऑटोमेटिकली क्वार्टर फाइनल्स में प्रवेश कर गए। वहीं पर अगर हम महिलाओं के लिए बॉक्सिंग के एंगल से देखें तो भारतीय महिला बॉक्सर्स का भी कुछ खासा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। साक्षी चौधरी लॉस्ट टू कजाकिस्तान्स अलोवा बालकेबेकोवा इन द वुमेन्स 51 kg राउंड ऑफ 16 बाउट एंड एग्जिटेड द कंपटीशन। वहीं पर 65 kg प्रीलिमिनरी राउंड ऑफ 16 में भारत की परवीन को वॉकओवर मिल गया थैंकफुली, विच वाज गॉड्स एंड गिफ्ट, एंड नाउ शी हैज मूव्ड इनटू द क्वार्टर फाइनल्स। शबाब
1: जी, बिल्कुल, बहुत ही शानदार तरीके से ये प्रदर्शन जारी रहा है। अब कई और ऐसे खेल रहे जिसमें भारत ने अच्छा प्रदर्शन ज़रूर किया, लेकिन जिन खेलों में सबसे ज़्यादा उम्मीद थी भारत को, मुक्केबाजी और निशानेबाजी, उसमें उतना वैसा प्रदर्शन नहीं रहा जिसकी उम्मीद थी।
0: जी ऑफकोर्स, निराशाजनक रहा, लेकिन फिर भी हमें उसमें भी एक ब्रॉन्ज मेडल आज प्राप्त हो गया। लेट्स नॉट फॉरगेट द मिक्स्ड टीम स्कीट इवेंट दैट हैपेंड व्हिच गॉट अस द ब्रॉन्ज टुडे, शूटिंग बीइंग दैट सेविंग ग्रेस, क्योंकि इट हैज बीन अ डिसअपॉइंटिंग रन ओवरऑल अगर शूटिंग की बात करें। लेकिन अभी आई विल कम बैक टू एथलेटिक्स दोस्तों, बिकॉज एथलेटिक्स में आज बहुत इवेंट्स हैं। तो हेप्टाथलॉन की अगर हम बात करते हैं ना कि वुमेन्स हेप्टाथलॉन आफ्टर 4 इवेंट्स क्या स्टैंडिंग है, तो भारत की पूजा इस वक्त बनी हुई है 8वें स्थान पर, और वहीं पर अनामिका कोजिन जपारम विल भी बनी हुई है 9वें स्थान पर। नंबर 1 पर अगर हम बात करते हैं तो फातिमा है, और नंबर 2 पर काई जुआन है। तो अभी ये कहना कि भारत यहाँ से कैसे क्वालिफाई करेगा या फिनिश ऑफ करेगा, ये बहुत अर्ली ऑन होगा, बिकॉज इसमें अभी और इवेंट्स एड ऑन होंगे, एंड देन वी विल कम टू सी दैट इन टोटैलिटी हाउ डज इंडिया स्टैंड, स्पेशली वेदर इट्स इंडियन वुमेन और इट्स इंडियन मेन, व्हेन इट कम्स टू द टेबल स्टैंडिंग्स की टॉप 3 में भारतीय मेन और भारतीय वुमेन एथलीट्स फिनिश कर रहे कि नहीं। लेकिन 4 इवेंट्स की समाप्ति पर हेप्टाथलॉन के रिजल्ट्स कुछ इस प्रकार रहे, और आपको इसके साथ साथ ये भी बता देंगे कि इस वक्त किस तरह की टेबल स्टैंडिंग्स यानी मेडल टेबल स्टैंडिंग क्या बनी हुई है भारत की। तो मेडल टेबल पर इस समय भारत है 14th पोजीशन पर, ही इज होपिंग दैट वी मूव ऑन द मेडल टैली, लेकिन अभी के लिए दैट इज ऑल दैट शबाब एंड मी साक्षी हैड इन दिस अपडेट। वी विल जॉइन यू बैक एट द 6:30 PM लाइव अपडेट ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026। थैंक यू।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெறும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்த தற்போதைய நிலவரம் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள். இனி தொடர்ந்து கேட்கலாம் ரெயின்போ மேடை.

वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी. मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त यहां पर मौजूद है शबाब अनवर. एंड द बिग न्यूज दैट वी ब्रिंग टू यू इन द 6:30 लाइव अपडेट ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026 इज फ्रॉम द वुमेन्स 10,000 मीटर फाइनल्स. यस, वी हैव आवर इंडियन एथलीट सीमा हु वेंट ऑन टू गेट द ब्रॉन्ज मेडल फॉर अस एंड फॉर हरसेल्फ, क्लॉकिंग अ टाइमिंग ऑफ 32:50.05. शी फिनिश्ड ऑन द थर्ड स्पॉट राइट बिहाइंड Bahrain, who grabbed the gold medal, while Japan's Tanaka Nozomi grabbed the silver medal. Good news coming in from the world of athletics, as was much expected. We are hoping that these medals go on increasing because athletics is one of the big hopes that India is going to be relying on. In the other news from athletics, hum aapko bata de ki women's triple jump ke andar Asha Elango missed out on a medal. Ji ha, Asha Elango could not improve. Unka jo pehla attempt tha, it was of 13.43. Second one was invalid. Third attempt was 13.83. Fourth was 13.63. Fifth was 13.65. And sixth was 13.59. अब आपको ये बता दे कि जो because she missed out on a final, what was the reason for that? It was because she was tied with China's Wai Li, but still with a best of 13.83. But Yai Li had a better second best. जो यहाँ पर आशा इलांगो का सेकंड बेस्ट था वो इनवैलिड कंसिडर किया गया था, जबकि चाइना की याई ली का सेकंड बेस्ट वाज 13.83 मीटर्स. एंड हेंस द चाइनीज वेंट ऑन टू गेट द ब्रॉन्ज मेडल, व्हाइल आशा इलांगो फ्रॉम इंडिया

0: Just missed out by a whisker from scripting history in women's triple jump today, but maybe better luck next time in life, definitely. Ab baat karte hain women's heptathlon ki in short put, where Pooja moved on to the fourth spot after registering a throw of 11.44 meters in her third attempt. I will carry on with these updates in athletics, but right now it's also time for me to cue back in Shabab, who has some updates to share with all you lovely people.
1: Yes, bahut achi khabar aapne shuru mein sunai, Seema Kumari ki, jinhone kaanse padak jeeta, aur ab aise khel ke bare mein jante hain jinka ये मुकाबला शुरू होने से पहले पदक की पूरी उम्मीद सभी को होती है, वो खेल कबड्डी है, आप जानते ही हैं। तो आज के जो मुकाबले कबड्डी में समाप्त हुए हैं उसमें दोनों वर्गों के सेमीफाइनल की लाइनअप भी तय हो गई है। पुरुष और महिला कबड्डी दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय महिला टीम कल सुबह 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार नेपाल के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगी और इसके बाद भारतीय पुरुष टीम सुबह 10:45 पर थाईलैंड से मुकाबला करेगी। और एक यहां पर हम आपको बता दें कि एक अपसेट हुआ है, हालांकि उसका संबंध भारत से नहीं है, टेबल टेनिस का वो स्पर्धा है और उसमें 1990 के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि चीन चैंपियन नहीं बना है। इसमें जापान में आप जानते हैं कि मेंस टीम टेबल टेनिस फाइनल में चीन को 3-2 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। मेजबान टीम ने गोल्ड छीन लिया है। मेजबान जापान ने चीन को 26 साल लंबे दबदबे को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इस हार के साथ चीन 1990 के बाद पहली बार एशियन गेम्स के मेंस टीम टेबल टेनिस चैंपियन नहीं बन सका है। तो ये एक उलटफेर बहुत बड़ा हुआ टेबल टेनिस में।
0: हाँ जी शबाब, एंड कैरिंग ऑन दी अपडेट्स ऑफ एथलेटिक्स, आपको ये भी बता दें, आपको हमने ये तो बता दिया वुमेन्स 10,000 मीटर फाइनल्स में सीमा कुमारी ने आज ब्रॉन्ज जीत लिया, लेकिन वही वुमेन्स हेप्टाथलॉन 100 मीटर हर्डल्स की हीट वन में अनामिका ने फिनिश किया चौथे स्पॉट पर विद द रिजल्ट ऑफ 14.80। वही वुमेन्स हेप्टाथलॉन 100 मीटर हर्डल्स हीट टू में पूजा फिनिश ऑन द फिफ्थ स्पॉट विद द रिजल्ट ऑफ 14.61। सो हेप्टाथलॉन के सारे इवेंट्स एक साथ जब टोटल किए जाएंगे खिलाड़ियों के परफॉर्मेंसेस को, आफ्टर दैट वॉट एवर द टोटल स्टैंड्स विल बी द क्यूमुलेटिव फिगर टू डिसाइड की कौन सा देश फिनिश करेगा इन द टॉप थ्री, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और ये रिजल्ट्स हम आपको कल ही बता पाएंगे बिकॉज हेप्टाथलॉन के कुछ इवेंट्स कल भी होने वाले दोस्तों, एंड आफ्टर दैट विल बी द फाइनल मेडल टैली काउंटिंग एंड ऑल्सो द टोटल नंबर्स काउंटिंग टू विच विल डिसाइड विच कंट्री स्टैंड्स ऑन विच पोजिशन। एंड अ क्विक वन ऑल्सो इन एथलेटिक्स इज दैट अनिमेश कुजूर एंड गुरिंदर वीर सिंह हैव क्वालिफाइड फॉर द मेन्स 100 मीटर सेमी फाइनल एट द एशियन गेम्स। वेल अनिमेश कुजूर हैड अ टाइमिंग विच क्लॉक्ड ऑफ 10.36 सेकेंड्स, वेल गुरिंदर वीर Singh had a timing of 10.38 seconds. We'll have to see how that develops on the athletic front. And some good news that has come will leave us with the smile of the 10,000 meter finals in women's. Shabab, jo humne bataya.
1: Aur ek achhi cheez aaj bhi rahi hai ki bahut logo ko ye ummeed thi ki shayad Korea se muqabla hockey mein kada ho, lekin Bharat ne use bhi nikal liya aasani ke saath 8-2 se.
0: Haan ji, hockey ke andar to dabdaba raha hi hamesha se Bharat ka hockey, kabaddi, these are the sports where we should be counting in the medals, and of course not to forget cricket also, the men's cricket also, the Indian representation which shall be starting in the next few days also. But women's world final ki baat kar lete hain. Aaj usme kya hua? Praniti Nayak finished 6th in the women's vault, a disappointing performance coming in over there. More updates will carry on in athletics in the next 1 hour also. Hum apne sare listeners ko bata de, filhal aap sabke chehron pe ye choti si achi hansi chhod kar ja rahi hai ki Seema Kumari ne bronze grab kar liya athletics mein in women's 10,000 meters finals. We'll join you back at the 7:30 update. For now it's Shabab and me Sakshi saying goodbye.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: The evenings just got more exciting. Tune in to Drive Time on 101.4 FM Rainbow for your daily dose of music handpicked by you on the Listener's Choice app, where your dedications and your favorite tunes take the spotlight. Drop your requests at facebook.com/rainbowfm and we'll spin it live.
4: Chapter systems are offline.
5: Number one for today's hits and all-time favorites.
3: Whether you're kicking back, winding down or just vibing, Drive Time is your perfect musical companion. 7 days a week from 6 to 7 p.m. only on 101.4 FM Rainbow. Turn it up, tune in, let the music move you.
5: Ladies and gentlemen, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। दोस्तों मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं शाबाब अनवर एंड द बेस्ट न्यूज ऑफ द डे इज कमिंग एंड हैज कम फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एथलेटिक्स। जी हां, द बिगेस्ट न्यूज ऑफ द डे शुड आई बी सेइंग इज दैट इंडिया वेंट ऑन टू विन द सिल्वर मेडल इन 4x400 मीटर रिले मिक्स्ड इवेंट। द क्वार्टेट ऑफ पूवम्मा राजू, विशाल थिनारासु, विद्या रामराज एंड मनु टीएस who were representing India made sure that India finished with that coveted silver. At one point it looked that we might have to suffice with the bronze, but we were able to get that coveted silver for us. And also let me just inform all our listeners over here that India have already won the gold in 2018 and also the silver in 2022, and now we've been able to make sure that we maintain that silver once again into the 4x400 meter relay mixed event. Shabab,
2: yeah bilkul, aur ab us samay aa gaya hai shayad पांचवा छठा दिन के बाद के लगातार जो भारतीय एथलीट हैं वो अपना दबदबा बरकरार रखेंगे सभी खेलों में। कल कबड्डी का दोनों सेमीफाइनल है, लगभग पदक पक्का कर लिया है दोनों ही टीमों में। और आप जानती हैं कि किस प्रकार से अपने स्वर्ण पदक की रक्षा भारत को करनी है कबड्डी के खेल में। जापान को जिस तरह से अपने अंतिम मैच में हराया है, 50-25 का अंतर था, तो कोई भी मुकाबला ऐसा नहीं हुआ है, अगर एक मुकाबले को शायद हम छोड़ दें, जिसमें ऐसा लगा हो कि भारतीय कबड्डी खिलाड़ी चाहे पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग हो कहीं पर कांटे की टक्कर हुई हो। बहुत ही आराम के साथ हॉकी में भी और कबड्डी में भी, हॉकी में देखिए कोरिया से कहा जा रहा था कि शायद कोरिया की टीम जो है थोड़ी सी मजबूत साबित हो, लेकिन कोरिया को हमारी भारतीय हॉकी टीम ने आसानी से 8-2 से पराजित किया। तो जिन खेलों में हमारे पास अच्छी शक्ति है उधर बहुत अच्छे तरीके से चीजें जा रही हैं।
1: राइट, आई विल गिव अ क्विक अपडेट ऑन ऑल द रिमेनिंग एथलेटिक इवेंट्स आल्सो दैट हैपेंड टुडे, वेयर सीमा कुमारी डिलीवर्ड इंडियाज फर्स्ट एथलेटिक मेडल ऑफ एशियन गेम्स 2026 बाय विनिंग द ब्रॉन्ज इन द वुमेन्स 10,000 मीटर फाइनल टुडे। सीमा फिनिश्ड विद द टाइम ऑफ 32:50.05 एंड बैग्ड द नेशंस फर्स्ट मेडल इन द इवेंट इन 16 years। जी हाँ, 16 साल में पहली बार हमें ये पदक मिला है। अर्लिया आशा लांगो नैरली मिस्ड आउट ऑन अ हिस्टोरिक फर्स्ट वुमेन्स ट्रिपल जंप मेडल। शी फिनिश्ड विद द सेम बेस्ट थ्रो एज द ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बट मिस्ड आउट ड्यू टू अ वर्स सेकेंड बेस्ट अटेम्प्ट। वहीं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर क्वालिफाइड फॉर द मेन्स 100 मीटर

0: the semi-finals with timings of 10.38 seconds and 10.36 seconds respectively. Heptathlon mein Pooja aur Anamika Anish are not in the medal positions with three more events to go. Kal aur zyada clear ho jayega ki Bharat ki standing kis prakar rahegi medal table mein aur khas taur se athletics ke andar. Rowing ke andar bhi aapko quick update de de, the day started off with a medal first of all that came from the men's double sculls final jiske andar humne dekha kis tarah se Satman Singh aur Salman Khan ne aaj teesre sthan par men's double sculls mein with a timing of 6 minutes 13.25 seconds ke saath Bharat ko aaj ke din ki early morning shuruaat mein bronze medal dilwaya tha. Shabab?
1: Yeah, bilkul. Shuruaat to aaj subah mein achhi rahi. Pehle silver sabse pehle, phir bronze aur uske baad phir thoda sa din mein ऐसा लगा था कि सन्नाटा सा हो गया है, लेकिन अंतिम समय पर यह सन्नाटा पूरी तरह से चीरते हुए एक तरह से भारतीय एथलीटों ने फिर से जगा दिया है भारतीय खेल फैंस को. एक
0: जी सन्नाटा इतना तो हुआ नहीं था क्योंकि यस एक साइड पे हमने देखा रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान कैसे उन्होंने हमें ब्रॉन्ज दिलाया. उसी के साथ साथ वुशु ने भी आज सबसे बड़ी खबर दिन की हमें दी थी जहां रोशिबिना देवी ने वुमेन 60 kg फाइनल्स में आज भारत को सिल्वर मेडल दिलवा दिया. यस वंस अगेन इफ यू आर टॉकिंग ऑफ दैट शी दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स दैट हैपेंड बिकॉज शी वॉज एबल टू गेट अ हैट्रिक ऑफ मेडल्स. आपको बता दें ब्रॉन्ज उन्होंने 2018 में कमाया था, उसके बाद 2022 में भी उनको सिल्वर मेडल से नवाजा गया था और अब उन्होंने इस साल के एशियन गेम्स 2026 में हैट्रिक ऑफ मेडल्स कंप्लीट कर लिया. सो अनदर गुड थिंग दैट हैपेंड फॉर द इंडियंस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ वुशु. शूटिंग के अंदर शुरुआत में तो ऐसा लगा था कि बहुत ही निराशाजनक खबरें आ रही थी, लेकिन अंत में चलते चलते हमारे शूटर्स ने मिक्स टीम स्कीट फाइनल्स के अंदर हमें खुशखबरी दिलवाई दी थी क्योंकि उन्होंने हमें दिला दिया ब्रॉन्ज मेडल एंड विद दैट समहाउ इंडिया कुड से दैट वी फिनिश्ड ऑफ ऑन अ सैटिस्फाइड नोट. मेडल टेबल में भारत की पोजिशन है 15th इस समय. 16 मेडल्स आ चुके हैं भारत के पास जिसमें से एक गोल्ड है, 6 सिल्वर है, 9 ब्रॉन्ज है. वी आर होपिंग दैट इंडिया गोज ऑन टू इम्प्रूव इट्स पोजिशन इन द कमिंग डेज इन द ऑन गोइंग कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स 2026. इसके साथ आपको बता दें कि आज की अपडेट तो यहीं पर आके समाप्त होते हैं शबाब, लेकिन हम कल सुबह एक बार फिर 9:30 बजे से अपने श्रोताओं के साथ आकाशवाणी के माध्यम से जुड़ेंगे ब्रिंगिंग यू द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 एवरी आवर. फॉर नाउ इट इज शबाब अनवर एंड मी साक्षी मांडवाल सेइंग गुड बाय एंड थैंक यू टू ऑल आवर लिसनर्स.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
3: நேர்களே, இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெறும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்த தற்போதைய நிலவரம் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள். இனி தொடர்ந்து கேட்கலாம் ரெயின்போ சாட் பாக்ஸ். எஸ் அன்பு நெஞ்சங்களே, சுபமான மாலை நேரத்தில், அது மாலை தான் கண்டிப்பாகவே, இந்த டைமும் வந்து மாலை தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்படியான இந்த நேரத்தில் அழகான பாடல்கள் நம்ம ரெயின்போ சாட் பாக்ஸில் கேட்டு ரசிச்சுட்டு வந்துட்ருக்கோம். இந்த பாடல் வரவிருக்கிற இந்த பாடல் சேரன் பாண்டியன் திரைப்படத்திலிருந்து கண்கள் ஒன்றாக கலந்ததா. இந்த பாடல் சௌந்தர்யன் இசையமைப்பில், சௌந்தர்யன் வரிகளில் மனு மற்றும் சித்ரா இணைந்து படிய பாடல். இதோ உங்களோட தொடர்ந்து கிளம்புது ரெயின்போ எஃப்எம் 101.4 எங்க எல்லாமே சமதுல.

0: Indian athletes have added 5 medals to their Asian Games tally on Thursday to take the overall total to 17 medals. The Indian team bagged silver in the 4x400m mixed relay with an outstanding performance from the athletes. Before that silver, a superb 10,000m run from Seema Kumari ensured a bronze for India after 16 years in this event. The day started with rowers Satnam Singh and Salman Khan claiming a bronze medal in the men's double sculls event. A.S. Naruka and Parinas Dhalewal added a skeet shooting bronze medal in the afternoon, while Roshabina Devi claimed a silver in Wushu after losing the final to Zhang Xiao of China in the women's 60kg Sanda event. Let's now take a detailed look at athletics, where India got 2 medals today. Prerna Sharma has more.
1: Bharatiya athletes dikhane lage rang, ek ke baad ek medal aur ab athletics mein gold ka intezaar. Indian athletics ka medal account ab khul chuka hai aur track and field se lagatar achhi khabrein samne aa rahi hain. Silver aur bronze dono medal Bharat ki jholi mein aa chuke hain. Ab intezaar hai us sunahre pal ka jab podium par gold ke saath Bharatiya tiranga sabse upar lehraye. Shuruaat karte hain mixed 4x400 मीटर रिले से, जहां इंडिया ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया. पूर्व मराजू विशाल थेनारसु, विद्या रामराज और मनु टीएस के क्वार्टरेट ने 3:14.46 का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया. इस रेस का सबसे खास पल आया आखिरी लेग में, जहां विद्या रामराज ने शानदार दौड़ लगाते हुए इंडिया को सिल्वर तक पहुंचाया. बहरीन के गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता और इंडिया ने हांगझाओ 2023 में जीता सिल्वर इस बार भी बरकरार रखा. अब बात उस मेडल की जिसने एशियन गेम्स 2026 में इंडियन एथलेटिक्स का खाता खोला. महिलाओं की 10,000m रेस में सीमा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता. उन्होंने 32:50.05 का समय दर्ज किया. ये एशियन गेम्स 2026 में एथलेटिक्स का इंडिया का पहला मेडल है. साथ ही महिलाओं की 10,000m में यह 2010 के बाद इंडिया का पहला एशियन गेम्स मेडल भी है. 2010 में प्रीजा श्रीधरन ने गोल्ड और कविता राउत ने सिल्वर जीता था. 16 साल बाद इस इवेंट में एक बार फिर इंडिया ने पोडियम पर जगह बनाई है. अब रुक करते हैं मेंस 100m की ओर, जहां भारत के अनिमेश कुजूर और गुरविंदर सिंह ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है. अनिमेश कुजूर ने अपनी हीट में 10.36 का समय निकालते हुए तीसरा स्थान हासिल किया. उनसे आगे थाईलैंड के पूरीपोल बूनसन और चाइना के जेन केली रहे. तीसरे स्थान पर रहने के बावजूद अनिमेश ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया. वहीं हीट 4 में गुरविंदर सिंह ने 10.38 का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की. यानी अब मेंस 100m में भारत की उम्मीदें दोनों स्प्रिंटर्स पर टिकी हैं. अब बात करेंगे ट्रिपल जंप की, जहां भारत की आशा इलांगो ने आखिरी अटेम्प्ट तक पोडियम के लिए पूरा जोर लगाया. अपने सिक्स्थ और फाइनल अटेम्प्ट में आशा ने 13.59m की जंप लगाई और फोर्थ पोजीशन पर कंपटीशन खत्म किया. यानी पोडियम से उनका मामूली अंतर रह गया. इसी इवेंट में भारत की एक और एथलीट निहारिका वशिष्ठ ने हिस्सा लिया और वो 10th पोजीशन पर रहीं. अब रुक करते हैं हेप्टाथलॉन का, जहां भारतीय एथलीट्स का प्रदर्शन पहले दिन थोड़ा निराशाजनक रहा, लेकिन अभी उम्मीदें बाकी हैं. आज पहले दिन 4 इवेंट्स पूरे हो चुके हैं और अगर हम भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो सबसे पहले बात करते हैं अनामिका की. अनामिका ने 100m बाधा दौड़ 14.80s में पूरी कर 868 पॉइंट्स, हाई जंप में 1.74m की कूद लगाकर 903 पॉइंट्स, शॉर्ट पुट में 11.15m के थ्रो के साथ 605 पॉइंट्स और 200m दौड़ 25.96 में पूरी कर 801 पॉइंट्स हासिल किए. इन चारों इवेंट्स को मिलाकर उनका कुल स्कोर 3,177 पॉइंट्स बना, जिसके बाद वे 7वें स्थान पर रहीं. वहीं दूसरी ओर पूजा ने 100m बाधा दौड़ 14.61 में पूरी कर 894 पॉइंट्स, हाई जंप में 1.71m की छलांग लगाकर 867 पॉइंट्स, शॉर्ट पुट में 11.44m थ्रो के साथ 624 पॉइंट्स और 200m दौड़ 26.27 में पूरी कर 774 पॉइंट्स हासिल किए. पूजा का कुल जोड़ 3,159 पॉइंट्स रहा और वे 9वें स्थान पर बनी हुई हैं. लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है. कल दूसरे दिन बाकी 3 आखिरी इवेंट्स खेले जाएंगे, लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो और 800m दौड़. इन तीनों इवेंट्स का खेल पूरा होने के बाद ही सभी खिलाड़ियों के कुल अंक जोड़े जाएंगे और पहला, दूसरा और तीसरा स्थान यानी पोडियम फिनिश तय होगा. भारतीय फैंस की नजरें कल अनामिका और पूजा की जोरदार वापसी पर होंगी. तो एथलेटिक्स में भारतीय एथलीट्स का प्रदर्शन लगातार सुर्खियों में है. सिल्वर और ब्रॉन्ज के साथ भारत ने पोडियम पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है, जबकि कई भारतीय एथलीट्स

0: क्वालिफिकेशन और स्ट्रॉन्ग फिनिशेस के जरिए अगले मुकाबले की ओर बढ़ रहे हैं।
1: Now time to get you all the updates from shooting. Shabab Anwar has more.
2: भारतीय निशानेबाज अनंतजीत सिंह नारोका और परिनाज धालीवाल की जोड़ी ने भारत को निशानेबाजी का 8वां पदक दिलाया। ये भारतीय जोड़ी शॉटगन के स्किड मिक्स्ड स्पर्धा के फाइनल में 48 में से 44 निशाने लगाकर तीसरे स्थान पर रही और कांस्य पदक जीता। वैसे तो भारत और दक्षिण कोरिया का स्कोर बराबर रहा था, लेकिन टाई ब्रेकर के बाद भारत को ब्रॉन्ज से ही संतोष करना पड़ा। ये मौजूदा एशियन गेम्स में शूटिंग में भारत का 8वां मेडल है। इसमें 4 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। इससे पहले भारतीय निशानेबाजों ने 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन में निराश किया। कमलजीत ने 580 अंकों के साथ 9वां स्थान प्राप्त किया, जबकि आकाश भारद्वाज भी फाइनल में जगह नहीं बना सके।
1: It was a good day for Indian rowing, where history was made. Here's more. Indian double sculls rowers Satnam Singh and Salman Khan won the bronze medal at the Aichi Nagoya Asian Games 2026 on Thursday. In the first 1000 meter, India was seen trying to catch up to Uzbekistan and China in the lead. With 500 meters to go in the race, the pair momentarily went past the Uzbeks, but it was not to be. Satnam and Salman could eventually register a finish time of 6:13 and 25 seconds. China won gold and Uzbekistan ended up with silver. Earlier, Balraj Pawar missed out on a bronze medal in the men's singles sculls final. In the 2000 meter race, Balraj held on to second place with 500 meters to go before being overtaken. Balraj finished fourth with a timing of 6:54 and 80 seconds. Arvind Singh, Kulwinder Singh, Navdeep Singh and Jakar Khan finished fifth in the men's quadruple sculls final, while Ujjwal Kumar Singh and Rohit finished fourth in the lightweight men's double sculls final. And despite striving hard, there was disappointment for Gurbani Kaur, Ali Nanto, Tendeliti Habujam and Poonam finished last in the women's four final. There was an outstanding performance from the Wushu Arena today, and Sakshi Manwal has more.
3: Wushu icon Rushabana Devi added another historic chapter to her Asian Games journey, taking home the silver medal in the women's Sanda 60kg category after a hard-fought battle against China's Zhao Zhang. Rushabana gave it her all in the summit clash, but the Chinese contender edged ahead to claim the gold. With this effort, Rushabana Devi has become a 3-time Asian Games medalist, adding to her 2018 bronze and 2022 silver, and continues her reign as India's most decorated wushu athlete on the continental stage.
1: India had their first test in hockey today when they faced South Korea. Let's find out what happened. India completed its third consecutive win in the group stages of the Asian Games 2026 men's hockey tournament with an 8-2 win over South Korea. Dilpreet Singh and Abhishek completed a brace each as India extended its lead atop the Group A standings. Sukhjeet Singh, Harmanpreet Singh, Rajinder Singh and Shilanan Lakra were the other scorers for Craig Fulton's side. Kim Jao and Kim Yongbok found the back of the net for the South Koreans. Our boxers were in action at Aichi Nagoya. Shabab Anwar has more.
2: मुक्केबाजी में आज का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा और कुछ हद तक दिल तोड़ने वाला भी। साक्षी चौधरी मुक्केबाजी के महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में राउंड ऑफ 16 में हारकर बाहर हो गई हैं। उन्हें कजाकिस्तान की मुक्केबाज अलुआ बाली कोबोकोवा ने 3-2 से हरा दिया। साक्षी ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था और राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता आयरा वेलेगोस को हराकर राउंड ऑफ 16 में पहुंची थी, लेकिन इसके बाद उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उधर एक और महिला भारतीय बॉक्सर परवीन हुड्डा एशियन गेम्स के राउंड ऑफ 16 में मुकाबला खेले बगैर जीत गईं। कजाकिस्तान की मलिका नाजिमोवा ने उन्हें वॉकओवर दे दिया। अब क्वार्टर फाइनल में उनका सामना उज़्बेकिस्तान की नब्बखोर खामिदोवा से होगा। मुक्केबाजी के पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में आज दिल तोड़ने वाला एक ऐसा पल भी देखने को मिला, जब भारत का एक मुक्केबाज सुमित कुंडू को जीत के करीब होने के बावजूद मुकाबला छोड़ना पड़ा। सुमित मुकाबले में पूरा नियंत्रण बनाए हुए थे, तभी उनके घुटने में चोट लग गई। इसके बाद वो रिंग पर गिर पड़े। सुमित के लिए आगे खेलना संभव नहीं था और चोट के कारण उन्हें मुकाबला छोड़ना पड़ा। और इराक के अली कासिम को वॉकओवर के द्वारा अगले दौर यानी के क्वार्टर फाइनल में जगह मिल गई।
1: They were successful for India in squash as well. Sakshi Manwal tells us why.
3: In men's single round of 16, Abhay Singh defeated Ravindu Laksari of Sri Lanka 11-3, 11-5, 11-6, thereby sealing the match in his name in clean games, making it 3-0 to secure a victory for himself. Veer Chotrani faced a tougher battle against Malaysia.

0: Sanjay Jiva. The final score of the match was 3-2 in favor of India's Veer Chotrani, the score line being 11-9, 8-11, 11-6, 15-11, 11-6. Anahat Singh began her women's singles campaign with a convincing 3-0 win over Singapore's Au Yuang Wai In. She took the game 11-4, 11-5, 11-7 in her favour to advance to the quarterfinals. Tanvi Khanna pulled off a comeback win over Singapore's Au Yuang Wai Yan in the women's singles round of 16. After dropping the opening game 5-11, Tanvi responded by winning the next three 11-4, 11-5 and 13-11 to seal a 3-1 victory. The Indian held her nerves in a tense fourth game to book her place in the quarterfinals. Tanvi Khanna will now face Anahat Singh in the quarterfinals. Joshna Chinnappa and V. Senthil Kumar secured a hard-fought 2-0 victory over fellow Indian Suraj Chand and Shamina Riaz to advance to the mixed doubles quarterfinals. The final scoreline stood like 11-7, 11-10. The second game proved to be a thriller with Suraj and Shamina fighting back from 7-9 down to level the score at 9-9 and earn a game point. However, Joshna's experience held firm during the pressure points, allowing her and Senthil Kumar to close out the match in their favour.
1: The Indian contingent was in action in Kabaddi. Prerna Sharma has more.
2: Asian Games में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने एक बार फिर अपने अभियान को जीत की लय में आगे बढ़ाते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीनी ताइपे के खिलाफ 37-21 की जीत के साथ भारत ने ग्रुप ए में सभी चार मुकाबले जीतकर ग्रुप स्टेज का समापन किया। यानी अब खिताब की राह में भारत के सामने सिर्फ दो मुकाबले और हैं। अब कल सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का मुकाबला थाईलैंड से होगा। दूसरी तरफ अगर महिला कबड्डी की बात करें तो मेजबान जापान के खिलाफ भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50-25 की बड़ी जीत दर्ज की। आखिरी रेड में बोनस पॉइंट्स के साथ भारत ने अपनी एशियन गेम्स अभियान का ग्रुप स्टेज खत्म किया। इस जीत के साथ भारत ने ग्रुप ए में लगातार तीसरी जीत हासिल की और टॉप पर रहकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना नेपाल से होगा।
1: There was more good news for India from the table tennis arena. Let's hear from Sakshi Manwal.
0: India have marched into the third round in women's doubles table tennis with Diya Chitale and Yashaswini Ghodpade securing a straightforward 3-0 win with the scoreline reading 11-2, 11-2, 11-4. In women's doubles round 2, another Indian women's doubles team showed its class with a 3-0 win over Mongolia. Shreeja Akula and Cinderella Das began their women's doubles campaign in style, cruising to a comfortable 3-0 victory with the scoreline reading 11-5, 11-4, 12-10 over bowler Erdine Buttbook and Sanja. In men's single round 1, Indian paddler Manush Shah started his men's singles campaign with a win over Malaysia's Wong Kui Shen. Manush prevailed over Wong with a clean 4-0 scoreline that read 11-9, 14-12, 11-7, 11-4.
1: It was a tough day for the Indian fencing contingent. Prerna Sharma has the details.
2: महिला व्यक्तिगत सेबर फेंसिंग स्पर्धा में भारत की सीए भवानी देवी और श्रेया गुप्ता ने राउंड ऑफ 16 तक का सफर तय किया। दोनों खिलाड़ियों ने पूल स्टेज से नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई, लेकिन राउंड ऑफ 16 में मिली हार के साथ इस स्पर्धा में भारत का अभियान समाप्त हो गया। भारत की पहली ओलंपिक फेंसर सीए भवानी देवी ने पूल चार में 5 मुकाबले खेले, 2 जीत के साथ वह पूल चार में चौथे स्थान पर रही और नॉकआउट स्टेज में पहुंची। इसके बाद राउंड ऑफ 32 में भवानी ने मुकाबले में 15-8 से जीत दर्ज की और राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। राउंड ऑफ 16 में उनके सामने चीन की राओ शुएई थी, जो 2026 वर्ल्ड चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता हैं। राओ ने मुकाबले में शुरुआती बढ़त हासिल की और अंततः 15-5 से जीत दर्ज की। इसके साथ भवानी देवी का एशियन गेम्स 2026 में महिला व्यक्तिगत सेबर फेंसिंग अभियान समाप्त हुआ। दूसरी ओर श्रेया गुप्ता ने पूल 2 में तीसरा स्थान हासिल कर सीधे राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया। पूल स्टेज में उन्होंने 3 मुकाबले जीते, जबकि 2 में उन्हें हार मिली। तीसरे स्थान के कारण उन्हें राउंड ऑफ 32 में मुकाबला नहीं खेलना पड़ा। राउंड ऑफ 16 में श्रेया का सामना दक्षिण कोरिया की जॉन हा यंग से हुआ। पेरिस ओलंपिक 2026 की रजत पदक विजेता जॉन ने श्रेया को 15-6 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
1: The Indian contingent strived hard to make an impact in swimming. Sakshi Manwal tells us the results.
0: India's Benedictine Beniston finished 5th in the Heat 5 of men's 50-meter butterfly event, failing to qualify for the final directly but was placed in reserves. He finished 12th overall. In men's 4x100-meter freestyle relay heats, Benedictine Beniston, Anish Sunil, Akash Mani and Gitesh Shah were eliminated in the heats after finishing last in their 6-team

0: race. They recorded a time of 3 minutes 23.51 seconds, leaving them 12th overall out of 13 teams.
1: It was a tough day for India in canoe. Sakshi Manwal has more.
0: India faced a disappointing day in canoe sprint with all four entries missing out on medals at the Miyoshi Lake canoe course. Raju Rawat and Film Gyaneshwar Singh finished 9th and last in the men's canoe double 500 meter finals, choking 1 minute 56.121 seconds. The Indian pair finished 15.380 seconds behind gold medalists China's Wu Shengyu and Ji Bowen. India's men kayak four finished 7th in the 500 meter finals with the quartet of Niyocha Singh Lithonjem, Varinder Singh, Oynam Arun Singh and Harshvardhan Singh Shaktawat clocking 1 minute 28.982 seconds. In the women's kayak double 500 meter game, Sonia Devi and Parvati Geeta failed to make the final after finishing last in their semi final in 2 minutes 1.020 seconds. Megha Pradeep also missed out in the women's canoe single 200 meter final after finishing 4th in her 5 boat semi final in 51.093 seconds. Megha finished 1.666 seconds behind the winner.
1: Let's now hear from the latest from what happened in the eSports arena with Prerna Sharma.
2: eSports एक ऐसा खेल जो मैदान पर नहीं बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पर खेला जाता है. भारत के लिए eSports से अच्छी खबर आई है. भारत के डेब्यूटेंट परितोष ने ग्रुप बी में 2 जीत और 2 हार के साथ तीसरा स्थान हासिल करते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. अब परितोष पोयो पोयो चैंपियंस के क्वार्टर फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. उन्होंने eSports में भारत की चुनौती को अगले चरण तक पहुँचाया है.
1: 5 medals have come on a terrific Thursday for the Indian contingent. Here's the latest from the medals tally.
2: और इसी के साथ एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए एक और रोमांचक दिन समाप्त होता है, जहां एथलेटिक्स, वुशू, शूटिंग और रोइंग में 5 नए पदक, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जुड़ गए. अगर मेडल टैली की बात करें तो टॉप 3 देशों में चाइना 80 गोल्ड, 30 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज के साथ कुल 130 मेडल जीतकर पहले स्थान पर है. जापान 20 गोल्ड, 34 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज के साथ कुल 91 मेडल लेकर दूसरे स्थान पर है. दक्षिण कोरिया 10 गोल्ड, 12 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज के साथ कुल 50 मेडल जीतकर तीसरे स्थान पर है. वहीं भारत 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मिलाकर कुल 14 मेडल के साथ 15वें स्थान पर बना हुआ है.
1: So a good day for India today, but they'll be hoping for a lot more on September 25th, Friday. India's hopes will be on shooting when the men's 50-meter rifle 3 positions individual and team final with APS Tomar, Rudraksh Patil and Neeraj Kumar holding India's hopes. Kamaljeet and Suruchi Inder Singh will also be representing India in the shooting 10-meter air pistol and hoping to make it to the final. It's a crucial day for Kabaddi. It's semi-finals time for both men's and women's as India faces Nepal in the women's Kabaddi and India then face Thailand in the men's Kabaddi semi-final. 2 medals came for India in athletics today. Will the athletes tomorrow do well? Well, Manpreet Kaur and Krishna Krishna J. Menon are in action in the women's short put final, while the women's pole vault final sees Sindhushree Ganeshan and Baranika Elangaval in action. We had success in the women's 10,000 meter. Will Gulveer Singh do well for India in the men's 10,000 meter final tomorrow? And then Meet Singh and Praveen Kumar are in action in the men's hammer throw final. Apart from the gold medal events, India are also in action in hockey, where the women's team takes on Japan. Sachin and Preeti are in action in boxing, while Animesh and Gurvinder will try to make it to the finals in the 100 meter athletics. India will also be seen in the action in surfing, fencing, badminton, canoe, swimming and esports. So here's hoping for a great day from the Indian contingent. So that's all from the special Asian Games report on Akashwani. From producer Shehnawaz Khan, editor Vishal Kumar and me Abhinav Punchi, we bid you farewell and hoping that India have a glorious Friday and do well in the Asian Games. Thank you for listening.
3: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.
4: நேர்களே, இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெறும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 அன்றாட நிகழ்வுகளின் தொகுப்பை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள். இனி கேட்கலாம் ரெயின்போ ரிவைண்ட்.
5: ரெயின்போ ரிவைண்ட் அற்றை திங்கள் அந்நிலவில்